0: लाइका गोल्ड।
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड।
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे।
3: साउथ हॉल ट्रेवल
2: फोन 02085748410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
0: Voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs.
4: Borderless World presents Atif Aslam live in the UK.
0: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
4: Book your tickets now at AXS.
0: Zenby Productions, supported by Rianne's Music.
4: Exclusive radio partner, Laika Radio.
5: Classic Nagme. Aapke apne Laika Gold par.

मैं विसर न जाए। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जाणी है नाल चले सब कोए। चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जगले, जे तिस नदर ना

होए। मने सुत होवे मन बुद्ध, मने सगल पौन की शुद्ध, मने मोह चोटा ना खाए, मने जम के साथ ना जाए, ऐसा नाम निरंजन होए। जे को मन जाने मन कोए, मने मार्ग ठाक ना पाए, मने पत्स्यों प्रगट जाए, मने मग ना चले पंथ, मने धर्म से ती संबंध।

लख दरियाओ कुदरत कवन कहां विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती।

मूर्ख अंध गोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले होर के ते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो।

तिस दी वडियाई, जो तिस भावे सोई करसी, हुक्म ना करना जाई। सो पातशाह साहिब नानक रहन जाई।

अनाहत जुग जुग एको वेश। आसन लोय लोय भंडार जो कुछ पाया सो एका वार कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची।

जोर जोर ना जीवन मरण है जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती छित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान नदरी करम पवै निशान कच्छ।

0: Kajal's Morning Mantra, presented by Mantra Holidays, your friendly holiday partner for UK, Europe and other destinations. For your memorable holidays according to your taste and budget, call 0203-773-633 to book your dream holiday.
1: Like a go.
2: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रैवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
3: ट्रैवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड
3: विजिट travelhubworld.com
4: Step into the new grand showroom of Kajal's Couture, Southall.
5: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
4: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women.
5: Plus, beautiful jewellery and accessories. Find everything under one roof. Kajal's Couture, now open 7 days a week.
4: Kajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear. All in one destination.
6: 105 सुपर हिट शोज पछी हवे लंडन मा आवी रह्यु छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी
7: जेज एंटरटेनमेंट लईने आवी रह्या छे सखणा रेजो हसबंडजी
6: लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनी फुल गारंटी शनिवार 27 जून ना 27 पाटीदार समाज वेम्बली पार्क मा रातना 8 वागे टिकट्स बुकिंग माटे विजिट करो eventbrite.co.uk कॉल करो वीडियो रामा अथवा कॉल करो मिस्टर बी 07860280655 सखणा रेजो हसबंडजी
8: Mom, have you bought some of those delicious noodles?
9: You mean Koka, the king of noodles? Koka means delicious. Variety of flavors available in Koka packet, Koka cup and Koka bowl noodles. Suitable for vegetarians and halal approved. The king of noodles, Koka noodles, packets, cups and bowls now available everywhere in the UK.
10: Hillaro ane Umbro jevi acclaimed Gujarati films na national award winning director Abhishek Shah par ek var leine aavya che ek emotional comedy.
11: धबकारो
10: स्टारिंग देवेन भोजानी अने आर्जव देसाई
12: अहीना करेला अहीज भोगवाना छे
10: इन सिनेमास नहीं आयू
0: Mantra Holidays wishes you and your family a holiday season filled with joy, laughter and unforgettable moments. As you celebrate, start planning your next adventure with us. Visit www.mantraholidays.co.uk or call 0203-773-633 now. APTA bonded.
13: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
14: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
15: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: Like a gold. TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
1: TravelHub, best service with unbeatable price.
0: At all protected.
1: Visit TravelHubWorld.com.
2: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
3: लंडन एंटरटेनमेंट दी सब तो वड्डी रात आ रही है. फोर पिलर्स एंटरटेनमेंट्स लिमिटेड प्रेजेंस एबीपीडी अवार्ड्स यूके 2026. लाइव परफॉर्मेंसेस बाय नवीन कुंद्रा, मंजीत बॉबी, निकी सेठी ते होर जबरदस्त आर्टिस्ट्स. 9th मई शाम 6 बजे द सेंटर बैंकवेटिंग सुइट साउथ हॉल. फॉर टिकट्स कॉल मंजीत भमरा एट 7956300367. एबीपीडी अवार्ड्स यूके 2026 एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क.
4: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे. कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस. कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344. Hour line.
5: Psst. You. Yeah, you. Listening to the radio. Up to whatever. We just wanted to let you know there's a lotto draw coming up and
6: it could be you.
5: Yeah, what he said. Lotto. From the National Lottery. Rules and procedures apply. Players must be 18 or over.
7: Save even more this weekend with bank holiday offers in the Furniture Village sale. We've added new offers on sofas, dining, beds and bedroom furniture. And that's on top of sale prices. Bank holiday offers end Monday at Furniture Village, an award-winning family business.
8: આ સપ્ટેમ્બર પેરિસમાં ઇતિહાસ લખાઈ રહ્યો છે.
9: બીએપીએસ મંદિરનો ઓપનિંગ અને સ્ટાર ટૂર્સ તમને લઈ જઈ રહ્યું છે આ પવિત્ર યાત્રા પર.
8: યુરોપના 3-9 દિવસના ટૂર્સ
9: ફ્રાન્સ, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ઇટલી અને જર્મની સાથે
8: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ.
9: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે, આજે જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર સાથે.
8: કોલ 0208900-2323. ધ સ્ટાર ટૂર્સ.
9: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન.
10: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: भई ये भव्य स्वागत तो रवि शर्मा जी का होता है कुछ इसी तरह से, लेकिन आज उनकी इस हॉट सीट पर आपके मनोरंजन के लिए हाजिर है आप ही के अपनी सरिता सबरवाल। गुड मॉर्निंग टू यू, 5 minutes after 10 o'clock। जहाँ भी बैठे इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, आपका स्वागत, आपका खैर मकदम करती है आपकी प्रेजेंटर सरिता। कैसे मिजाज हैं? छुट्टी का दिन है, जी हाँ, बैंक हॉलीडे मंडे, आप छुट्टी मना रहे हो और हम काम। लेकिन ये काम नहीं होता है, ये एंटरटेनमेंट ही होती है और आपके साथ वक्त बिताकर बहुत अच्छा लगता है। उम्मीद करती हूँ जहाँ भी आप हैं खुश हैं, खैरियत से हैं, ज़िंदगी के हर पल को इंजॉय कर रहे हैं, हमेशा तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें, ये दुआ ये प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती आई हूँ और करती रहूँगी। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग टू वेल, गेट वेल सून। इफ़ यू आर फीलिंग बिट डाउन तो कम ऑन, चीयर अप, लाइफ इज़ टू लिव, लाइफ इज़ टू इंजॉय। जी और शान से मुस्कुराते, गुनगुनाते, चहकते महकते और थिरकते हुए। और गीतों की बात करें तो चुन चुन कर लाई है सरिता सिर्फ आप ही के लिए। तो पहले सुनते हैं बैक टू बैक दो गाने, लेकिन उससे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगी दीप राजा जी का, जो कि बैठे थे काजल की गैर हाजिरी में, और दूसरी तरफ थे डॉनी ब्रास्को। अब वहाँ है खुश और यहाँ है सरिता, साथ दीजिएगा टिल 1 o'clock।
1: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
2: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
3: TravelHub.
2: At all protected.
1: Leica. Forgotten memories refreshed. Leica Gold.

0: बैक टू बैक दो गाने आपने सुने, पहला गीता कयामत से कयामत तक फिल्म से 1988 की फिल्म जूही चावला एंड आमिर खान ने इस फिल्म में काम किया था, और दूसरा गीत मैंने चुना फ्रॉम द फिल्म जमीर 1975 की फिल्म एंड किशोरदा की आवाज़ में गाया हुआ एंड आशा जी की आवाज़ में गाया हुआ ये खूबसूरत सा गीत, उम्मीद करती हूँ आपने पसंद किया। जहाँ भी बैठे आप सुन रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, मुझे अपने होने का एहसास दिला रहे हैं, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वो सभी कुछ शामिल होगा जैसा कि रवि जी हमेशा शामिल करते हैं, कुछ न्यूज़ हेडलाइंस भी होंगी, चिंतन भी होगा नेक्स्ट आवर में, तो मेरा साथ देते रहिए और मिले जुले गाने होंगे, कुछ इधर उधर की बातें। अगर आप अपनी पसंद का कोई गीत सुनना चाहते हैं तो वैसे फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है, लेकिन यू कैन ऑलवेज सजेस्ट मी अ नाइस सॉन्ग और जिसके साथ आपकी कोई याद भी जुड़ी हो, और वो भी लिख कर भेजिएगा कि कैसी याद जुड़ी है उस गीत के साथ, तो मुझे प्ले करने में भी मज़ा आएगा। और आज के दिन जो फिल्में रिलीज़ हुई किसी भी ईयर में बिफोर 1999, अगर मुझे कुछ पता चला तो मैं वो फिल्म, उस फिल्म का गीत भी ज़रूर प्रोग्राम में शामिल करूंगी। किसी का बर्थडे है, शादी की सालगिरह है, बहुत बहुत मुबारकबाद देते हुए आज के प्रोग्राम को हम अब आगे बढ़ाते हैं।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: भई अगर आप SBI UK वालों के जरिए पैसे इंडिया में कहीं भी ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो देर किस बात की है, इतना अच्छा रेट मिल रहा है, 127 rupees 95 paisas अगेंस्ट 1 British sterling pound, और काम बड़ा आसान है। यू कैन ट्रांसफ़र वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking,

0: नजर,
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सार्थक। माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स।
2: The wait is now over. The King of Melody, Kumar Sanu, live in concert. For one night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall.
3: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
2: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
3: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasan.
2: Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education, Embryo Events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Leica Radio.
4: 105 सुपर हिट शोज पछी हवे लंडन मा आवी रह्यु छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी
5: जेज एंटरटेनमेंट लईने आवी रह्या छे सखणा रेजो हसबंड जी
4: लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनी फुल गारंटी शनिवार 27 जून ना 27 पाटीदार समाज वेम्बली पार्क मा रातना 8 वागे टिकट्स बुकिंग माटे विजिट करो eventbrite.co.uk कॉल करो वीडियो रामा अथवा कॉल करो मिस्टर बी 07860280655 सखणा रेजो हसबंड जी
6: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
7: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
6: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
7: गारंटेड
6: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे।
8: साउथ हॉल ट्रेवल
7: फोन 02085748410।
8: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: Step into the new grand showroom of Gajul's Couture, Southall.
3: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
2: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
3: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Gajul's Couture, now open 7 days a week.
2: Gajul's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
9: हिल्लारो अने उम्ब्रो जेवी अक्लेम्ड गुजराती फिल्म्सना नेशनल अवॉर्ड विनिंग डायरेक्टर अभिषेक शाह फरी एक वार लईने आव्या छे एक इमोशनल कॉमेडी।
10: तमारो तो जिंदगी छे के फिल्म नी वार्ता।
9: एक यू हार्ट जी कई फील करतु नतु।
11: मारी वार्ता अधूरी छे भाई।
9: बट वन बीट एंड एवरीथिंग चेंज्ड।
12: तमारो हृदय धबकारो चूकी जाय छे।
9: धबकारो स्टारिंग देवेन भोजानी अने आर्जव देसाई।
13: लोकेशन अहींना करेला अहींज भोगवाना छे।
9: इन सिनेमास नियर यू।
3: Every child deserves a childhood, but many children in India are forced to leave school far too early. Cry UK is helping children stay in school and build brighter futures. Just £25 could help two children continue their education. Visit www.ukcry.org and help to make a difference.
14: K Furniture stock clearance sale is now on. Enjoy massive discounts in store on sofas, Italian beds, bedroom and dining furniture, all available for immediate delivery. Buy orthopedic double divan bed for £399 and get the headboard and drawers absolutely free. Hurry, deals are on while stocks last. K Furniture stores at Cricklewood, Harrow and Slough or visit kfurniture.co.uk.
15: Har crunchy bite mein ek khas ethnic swaad. Har fry am shape mein hai wo bachpan ki yaad.
16: Snack time hunger ko banaye aur bhi tasty with Jaymin's fry ams in different shapes and yummiest flavors like lemon chili mint, manchurian, masala, peri peri or shizwan with best quality and same ethnic taste.
15: Jaimin Fryans, available at your nearest ethnic grocery stores.
2: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
3: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: राजेश रोशन जी का संगीत, याराना फिल्म से चुना गया गीत आपको पसंद आया, ये जानकर अच्छा लगा। आप मेरा स्वागत करें भाई, मैं आपका स्वागत करती हूँ प्रोग्राम में। मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ दीजिएगा टिल 1 o'clock। एक बजे के बाद आ जाएंगे बाली जी आपका मनोरंजन करने के लिए, एंड देन सैंडी शाह, एंड उसके बाद हमारी चुलबुली अश्विनी अपना प्रोग्राम लेकर 7 बजे हाजिर होंगी। राइट भाई, फरीदा गुलाम अली जी थैंक यू, संध्या भाव सर थैंक यू, मृदु जी, अनिल सोनी जी वियाना से हमारे साथ जुड़े हैं, एंड मीना लखानी जी थैंक यू, दिव्या इन हैरो, महेंद्र पटेल इन क्रॉयडन, प्रतिभा जी कहती हैं गजब का है दिन, सोचो ज़रा बीजेपी गॉट हिस्टोरिक विन इन बंगाल एंड इन असम, सो डे फॉर सेलिब्रेशन इन इंडिया एंड एल्सवेयर एवरीवेयर, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। राजीव पटेल जी थैंक यू आपका भी, और आपने कहा कि वेटिंग फॉर द चिंतन, यस आई विल ट्राई टू प्रेजेंट एज रवि शर्मा जी आपके लिए इतने अच्छे अच्छे चिंतन लेके आते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आज का चिंतन आपको पसंद आएगा, जो मेरी कोशिश होगी। महेंद्र बरजारिया जी आप हैरो में सुन रहे हैं, मितुल पटेल थैंक यू आपका भी, एंड तृप्ति थैंक्स अ लॉट, एंड हंसा वोरा जी आप भी जुड़ चुके हैं, अर्जुन जी आप भी हैं, भरत गंगाराम जी गुड मॉर्निंग टू यू, एंड प्रकाश सुथर जी नॉर्थ होल्ट में आप सुन रहे हैं सहर, थैंक यू आपका भी। अरे बड़ी लंबी लिस्ट है, बड़ी लंबी लिस्ट है। मिसेस शेख आप भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, इंजॉय कर रही हैं। बता दें कि ये याराना का गीत जो अभी आपने सुना, ये आप तक किसने पहुंचाया?
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store.
1: सिर्फ याद दिलाना चाहती हूँ, रात नहीं दिन है. और हाँ, छुट्टी का दिन है, आप रिलैक्स कर रहे हैं, मस्ट बी इन द बेड एज वेल. पर सुनते रहिए, कान मेरी तरफ होने चाहिए. और अब आपको इंतज़ार होगा कि न्यूज़ हेडलाइंस भी हों. राइट भाई, सबसे पहले तो जो मुख्य समाचार है जिसका सभी को इंतज़ार है बड़े दिनों से, वो है पश्चिमी बंगाल का. पश्चिम बंगाल में क्या ममता का शासन खत्म होने के कगार पर है? रुझानों में बीजेपी की भारी बढ़त, टीएमसी प्लस 92 में है और बीजेपी के पास 196. चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में बीते महीने हुए विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना जारी है और पश्चिम बंगाल में रुझानों में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी एंड टीएमसी से ये बहुत आगे निकलती दिख रही है. डेटा नेट के मुताबिक टीएमसी 95 सीटों पर और बीजेपी 193 सीटों पर आगे चल रही है. 294 सीटों की विधानसभा में बहुमत के लिए 148 सीटों की ज़रूरत होती है, यानी रुझानों में भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा बहुमत के पार हो चुका है. हालांकि अब भी ये रुझान है, लेकिन अगर टीएमसी चुनाव हारती है तो ये कई मायनों में ऐतिहासिक होगा, हिस्टोरिकल होगा. राज्य में साल 2011 से लगातार टीएमसी की सरकार है और ममता बनर्जी इन बीते 15 सालों से राज्य की मुख्यमंत्री हैं. बीजेपी अगर जीतती है तो ये पहला मौका होगा जब वो राज्य में सरकार बनाएगी. पिछली बार टीएमसी को 215 और बीजेपी को 77 सीटों पर जीत मिली थी. लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर आए लगभग सभी एग्जिट पोल्स ने बताया था कि टीएमसी और बीजेपी के बीच वोट शेयर का अंतर काफ़ी कम रहेगा और अगर किसी एक पार्टी को बहुमत मिलता है तो उसकी जीत का अंतर बहुत बड़ा होने की संभावना नहीं है. राइट, कुछ और खबरें. यूपी ने बनाया 9 साल में 9 लाख से अधिक पारदर्शी भारतीयों का रिकॉर्ड. योगी आदित्यनाथ ने यह अनाउंस किया. एंड दिल्ली फायर ट्रेजेडी, दिल्ली के शहादरा में भीषण आग एसी ब्लास्ट से लगी आग की आशंका और 9 लोगों की मौत हुई और 15 को बचाया गया. उत्तराखंड में बेटियों के लिए बड़ा फैसला, हर ब्लॉक में खुलेंगे बालिका छात्रावास और सीएम थामी की निर्देश. यूपी में स्मार्ट प्रीपेड मीटर व्यवस्था में हुए बड़े बदलाव, 67 लाख से ज़्यादा घरेलू उपभोक्ताओं को मिला फ़ायदा. रील बनाने के जुनून बना जानलेवा, 60 फीट टंकी हादसे में एक की मौत और 16 घंटे बाद सेना के हेलीकॉप्टर से बचाए गए बच्चे. ईरान ने अमेरिका को भेजा 14 सूत्रीय शांति प्रस्ताव, क्या है डोनाल्ड ट्रंप का अगला प्लान? ऐसी ही कुछ और खबरें आप टॉप ऑफ द आवर भी सुनेंगे हमारे यहाँ से. सुनते रहिए, साथ देते रहिए. तो वही अब एक और सूचना है जो आपके साथ मैंने साझा करनी है और वो है एसपीआई वालों की. यस, लाइका रेडियो नेटवर्क इज सेलिब्रेटिंग एसपीआई यूके गोल्ड स्क्रीन ब्रांच 50th ईयर विद अ स्पेशल लाइव ब्रॉडकास्ट ऑन Thursday 7th May ko from 11 AM. Join Kajal, who hosts the special celebrations. Deep Raja will also be in attendance. And the event will take place at SBI UK Gold Screen Branch, 630 to 632 Finchley Road, opposite Gold Screen Underground and Bus Station. To aap zarur jaiyega Thursday 7th May from 11 AM.
0: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Tombola presents that winning feeling.
3: Woo! Get in, honey!
2: £13 million is won on Tombola.
3: Woo!
2: every
3: hot chocolate
2: single
3: Woo! Come on, baby.
2: Day, which feels pretty good, apparently. Tombola, more games, more fun, more chances to win. Play now. To verify, add verification at tombola.com. 18 plus, gambleaware.org, terms apply.
4: Like a gold.
5: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
6: TravelHub, best service with unbeatable price.
7: At all protected.
6: Visit TravelHubWorld.com.
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
9: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
8: High appreciation.
9: In Dubai.
10: Are we there yet?
11: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
12: Relax, I've booked the Uber already.
11: How? My roaming isn't even working yet.
12: I switched to Simsy before we left London.
11: Simsy? Since when are you the tech expert?
12: Since I decided I want a stress-free holiday.
13: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simsy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simsy, holiday travel simplified.
14: T's and C's apply.
15: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, like our Radio.
16: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
17: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
18: London, good news. Aapka favorite iTech, up TRS Cash and Kerry, South Hall mein. Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. Full iTech at Unit 123 South Bridge Way, South Hall, UB2 4AX. Once you visit, you come again and again.
19: At Skylord Cruise and Holidays, we are cruise specialists,
20: bringing you incredible value and unforgettable luxury cruises worldwide.
19: Call today on 01923 883 100
20: or go to skylordcruiseandholidays.com.
19: Book with confidence.
20: We're Atoll protected.
21: Save even more this weekend with bank holiday offers in the Furniture Village sale. We've added new offers on sofas, dining, beds and bedroom furniture. And that's on top of sale prices. Bank holiday offers end Monday at Furniture Village, an award-winning family business.
0: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com. Like a Radio, finalist at the Radio Academy Arias 2026.

0: मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में गाया हुआ ये गीत आपने सुना, तो इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है। फिल्म का नाम था आप तो ऐसे ना थे, 1980 में आई थी ये फिल्म। बहुत प्यारा गीत और बहुत फेमस भी हुआ था। इसकी दो तीन वर्जन्स हैं और सभी गाए ये सभी वर्जन्स इनकी इस फिल्म की बहुत इस गीत की बहुत पसंद की गई थी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और ज़रा करेंसी रेट पर एक नज़र डालें।
1: ये है Leica Gold.
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Right, a pound in your pocket can get you today. Indian rupees 128.92 and Pakistani rupees 378.4, Bangladeshi taka 166.59, Afghanis 85.47, Sri Lankan rupee 433.45 and US dollars 1.35.
3: Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: Leica Gold.
2: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: राइट, बता दें आपको कि गोल्ड का रेट आज कम हुआ या ज़्यादा कम हुआ है। 108 pounds and 71 pence में 1 gram सोना मिल रहा है।
2: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
1: Leica Gold.
2: India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: राइट भी, कल तो मैच था, 46th मैच अलाहाबाद अहमदाबाद में हुआ और इंडियन प्रीमियर लीग का, पंजाब किंग्स एंड गुजरात टाइटंस के बीच में, एंड गुजरात टाइटंस वन बाय 4 wickets विद 1 ball रिमेनिंग। एंड आज दोपहर 3 बजे शुरू हो रहा है आज का मैच, 47th मैच, और मुंबई इंडियंस एंड लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होने वाला है। एंड 4 घंटे रह गए हैं मैच शुरू होने में, तो इंतजार कीजिए, वी विल अपडेट यू।
2: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय रेमिटली, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम विद कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड लो फीस। डाउनलोड द रेमिटली ऐप टुडे। रेमिटली यूके लिमिटेड इज ऑथराइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द एफसीए।
0: राइट भी, गीत संगीत का सिलसिला तो चल ही रहा है, और जो मेरे साथ ही बराबर मेरे साथ साथ चल रहे हैं, अपने होने का एहसास दिला रहे हैं, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। हमेशा आप बड़े प्यार से प्रोग्राम सुनते हैं और बताते रहते हैं क्या अच्छा लग रहा है आपको। हर गीत के बाद आपके मैसेजेस पहुँचते हैं, और आज जिसका भी बर्थडे है मेरी तरफ से, हमारी सारी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। सो बैंक हॉलीडे मंडे है, क्या कर रहे हैं आज? अभी तक घर में है, कहीं जाने की प्लानिंग शुरू हो रही है, या प्लान ऑलरेडी बन चुका था, या फिर ऑलरेडी आप हॉलीडे पर हैं, कहीं शॉर्ट ब्रेक के लिए गए हैं बच्चों के साथ, एंड कहां पर हैं इस वक्त बताना चाहते हैं तो व्हाट्सएप मैसेज मुझे भेज सकते हैं। नंबर तो आपका जाना पहचाना है, उसी नंबर के रास्ते स्टूडियो तक पहुँच सकते हैं। बाकी क्रिकेट के बारे में भी हम बताते रहेंगे, और क्या हो रहा है वहाँ पर वेस्ट बंगाल में उसके बारे में भी बताते रहेंगे। एंड यू रिमेंबर नेक्स्ट आवर में 11 बजे की खबरों के बाद चिंतन होता है, तो आज ही के दिन के साथ जुड़ा हुआ एक चिंतन आप तक पहुंचाने जा रही हूं। वैसे हो सकता है आप में से बहुत से लोग जानते हों कि आज इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे है, तो आपको इसके बारे में पता था या नहीं पता था मैं नहीं जानती, लेकिन इसी से रिलेटेड एक चिंतन मैं आप तक पहुंचाऊंगी प्रोग्राम के नेक्स्ट आवर में। आइए कुछ मैसेजेस सुनते हैं और उसके बाद अगला गीत हमें पहुंचाएगा न्यूज़ तक।
1: लाइका गोल्ड
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
4: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Daniel. Prime location,
3: high appreciation
4: in Dubai.
5: बोले तू ये क्या कर रहा है रे?
6: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ.
5: ये तो बताओ, कोई पता चला?
7: गुरु गुरु, इस 19 जून को द प्रिंस रीजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है. सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून.
8: तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
5: शीघ्र शीघ्र.
7: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रीजेंट होटल ऑन 19 जून. टू बुक कॉल 0208-514-5400. बुक ऑनलाइन एट Eventbrite.
9: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड.
10: Search is changing.
11: Customers aren't just using Google anymore.
10: They're asking AI.
11: And AI doesn't show 10 websites. It recommends one answer.
10: One business, one recommendation.
11: So, when someone asks AI, who's the best company for this?
10: Will your business be the answer?
11: Or the one that got left behind?
10: The future of search has already started.
11: Have you? Visit HartyHanks.com and make sure AI recommends you.
10: Harty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
12: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
13: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
14: Mantra Holidays wishes you and your family a holiday season filled with joy, laughter and unforgettable moments. As you celebrate, start planning your next adventure with us. Visit www.mantraholidays.co.uk or call 0203-773-633 now. APTA bonded.
15: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
0: साढ़े दसवें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का पवित्र जन्म स्थान तखत श्री हरमिंदर जी पटना साहिब दे लाइव दर्शन देखो सिर्फ जी पंजाबी स्काई 769 ते वर्जिन मीडिया 811 ते रोज सवेरे 3 बजे तो 8 बजे तक सिर्फ जी पंजाबी ते ही.
16: Holiday offers end this Monday in the Furniture Village sale. Don't miss your last chance to save.
17: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of 4 amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for 2 to Barcelona, a Michelin star dinner for 2 people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy! Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
18: Seven stations, one podcast, one mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk.
19: ये है
1: Leica Gold,
2: The Ravi Sharma Show on Leica Gold.

चिंतन, एक विचार, एक ऐसी बात जो आपके दिल पर असर कर जाए, आपको सोचने पर मजबूर कर दे, आपकी अंतरात्मा को भी थोड़ा सा हिला दे, आप भी कुछ अच्छे काम करने के लिए प्रेरित हो जाएं। यही मतलब होता है चिंतन का। दोस्तों, जैसा कि मैंने अर्लियर ऑन भी कहा था कि आज इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे है, 4th May, और इसी से रिलेटेड मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी बांटने जा रही हूँ जो सिर्फ दिल को छूती नहीं बल्कि हमें ये भी याद दिलाती है कि असली हीरो हमेशा पर्दे पर नहीं होते, कई बार वो हमारे आसपास होते हैं, हमारे इर्द गिर्द होते हैं, लेकिन चुपचाप अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी जिंदगी सुरक्षित रखते हैं। तो आइए आज 4th May इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे के मौके पर आपसे साझा कर लूं हिम्मत, उम्मीद और इंसानियत की एक सच्ची लौ की कहानी। और इस प्रेरणादायक कहानी का टाइटल है 4th May की लौ, 4 मई की लौ। ये कहानी है अनिरुद्ध की, जो कि एक फायर फाइटर है, एक ऐसा इंसान जिसकी ड्यूटी सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि एक वादा था, जहां डर होगा वहां मैं हिम्मत बनकर पहुंचूंगा। ये था उनका वादा, ये थी उनकी शपथ जब उन्होंने ये जॉब शुरू की। जहां डर होगा वहां मैं हिम्मत बनकर पहुंचूंगा। 4th May की सुबह थी, शहर में हल्की हल्की धूप फैली हुई थी, लोग अपनी अपनी दिनचर्या यानी डेली रूटीन में व्यस्त थे, बिजी थे, लेकिन फायर स्टेशन में हमेशा की तरह अलर्ट था, सतर्कता थी, क्योंकि आग कभी बताकर नहीं आती है, वो तो बस आ जाती है और ऐसे फैलती है कि क्या कहने हैं।

सो तभी अचानक साइन बजा, स्टेशन सारा अलर्ट हो गया। पुराने मोहल्ले में एक घर में आग लग गई थी, लपटें तेज थी, धुआं आसमान तक उठ रहा था और लोग घबराहट में इधर उधर भाग रहे थे। बिना वक्त बर्बाद किए अनिरुद्ध फायर ट्रक में अपने साथियों के साथ बैठे और वहां से साइन बजाते हुए निकल पड़े। अनिरुद्ध और उसकी टीम तुरंत मौके पर पहुंची। जैसे ही फायर ट्रक रुका, भीड़ में से एक महिला दौड़ती दौड़ती आई और उसकी आंखों में डर था, आवाज में कांपती हुई एक उम्मीद। वो रोते हुए बोली, मेरी बेटी अंदर है।

वो रोते रोते बोली, मेरी बेटी अंदर है, प्लीज उसे बचा लीजिए। उस पल अनिरुद्ध के दिल पर क्या बीती होगी, ऐसा मैं सोच रही हूँ। एक तरफ आग की भयानक लपटें और दूसरी तरफ एक माँ की टूटती हुई बिखरती हुई दुनिया। लेकिन उसने बिना एक सेकंड गवाए कहा, फिक्र मत कीजिए, मैं उसे लेकर ही बाहर आऊंगा। और वो आग के बीच घुस गया। धुआं इतना घना था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, गर्मी इतनी कि सांस लेना मुश्किल, लेकिन उसके कदम बिल्कुल नहीं रुके। वो हर कमरे में पुकारता रहा, बेटा तुम कहाँ हो, आवाज़ दो, तुम कहाँ हो, आवाज़ दो। आखिरकार उसे एक कोने में से छोटी सी बच्ची की हल्की सी सिसकने की आवाज़ सुनाई दी। डरी हुई, कांपती हुई, आंसू से भरी आंखें, बच्ची उसे मिल गई। अनिरुद्ध ने उसे अपनी ढाल में छुपाया और बाहर की ओर दौड़ा। जैसे ही वो बाहर आया, भीड़ तालियों से गूंज उठी। महिला ने अपनी बेटी को गले लगाया और रोते हुए बस इतना कह पाई, आपने मेरी दुनिया बचा ली, मेरी बच्ची को बचा लिया। अनिरुद्ध ने हल्के मुस्कान के साथ कहा, मैडम दुनिया बचाना हमारा काम नहीं है, लेकिन कोशिश करना हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, उस दिन शहर ने समझा कि 4 मई सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये उन लोगों को सलाम करने का दिन है जो अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी जिंदगी

ये औधे हैं जो हमारे लिए हमेशा सेवा करते हैं, तो तैयार हो जाइए, उन्हें एक बार धन्यवाद जरूर कीजिएगा। क्योंकि दुनिया चलती है उन बहादुर दिलों से जो आग में भी उम्मीद ढूंढ लाते हैं। जिंदगी में हम सब अपने कारण अपने लिए जीते हैं, हमें दूसरों की सोचनी चाहिए। दूसरों की मदद अगर हम कर सकते हैं तो उसमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए।

दुनिया बहादुर लोगों के सर पर ही चलती है, उन बहादुर दिलों से जो आग में भी उम्मीद ढूंढ लाते हैं। कभी किसी बेबस को देखें तो उसकी मदद के लिए आप भी जरूर खड़े हों। किसी निरोग को देखें, किसी अबला को देखें तो उसकी मदद के लिए जरूर अपने हाथ आगे बढ़ाएं। उनके चेहरे पर जो मुस्कान आएगी वो आपको भी खुश कर देगी, आपको और भी हौसला देगी।

0: की दुनिया सिर्फ ताकत से नहीं, हिम्मत, सेवा और इंसानियत से चलती है। अगर आपके आसपास कोई फायर फाइटर हो या कोई ऐसा इंसान जो दूसरों की सुरक्षा के लिए खड़ा रहता है, तो उसे एक बार धन्यवाद ज़रूर कहिए, क्योंकि उम्मीद की लौ उन्हीं दिलों में जलती है जो दूसरों के लिए जलने का हौसला रखते हैं। कल फिर एक नई इंस्पायरिंग स्टोरी लेकर आपके साथ रहूंगी। कल का प्रोग्राम भी सुनिएगा, कल भी मैं यही हूँ, इनफैक्ट पूरा हफ्ता मैं आपका साथ निभाऊंगी। इस चिंतन के साथ जो गीत मैंने जोड़ा वो फिल्म अनारी से था, जो 1959 में आई थी और मुकेश जी की आवाज थी।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: राइट भाई, अगर आप SBI UK वालों के ज़रिए पैसे ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो किसने मना किया है? इंडिया में कहीं भी आप पैसे पहुंचा सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ट्रांसफ़र वाई अ ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। एंड टुडे यू कैन गेट 127.95 rupees अगेंस्ट 1 British sterling pound.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Leica Gold.
3: Leica Gold.
4: Ye hai Leica Gold. 10:35 AM.

0: शिव हरि का संगीत, फिल्म का नाम था चांदनी, 1989 की फिल्म थी। ऋषि कपूर एंड श्रीदेवी ने इस फिल्म में काम किया था। बहुत खूबसूरत फिल्म थी और इस फिल्म के सारे गाने ही जबरदस्त थे। उम्मीद करती हूँ मेरा चुना गीत आपने पसंद किया। और जल्दी से याद दिला दूं, लाइका रेडियो नेटवर्क की सेलिब्रेटिंग SBIU के गोल्डन स्क्रीन ब्रांच 50th ईयर विद अ स्पेशल लाइव ब्रॉडकास्ट ऑन थर्सडे 7th मे फ्रॉम 11 AM। जॉइन काजल हु होस्ट द स्पेशल सेलिब्रेशन एंड दीप राजा विल आल्सो बी इन द अटेंडेंस एंड द इवेंट विल टेक प्लेस एट SBIU के गोल्डन स्क्रीन ब्रांच 630632 फिंचली रोड Opposite Golden Screen Underground Station and Bus Station. So, zarur pahunchiyega.
1: This is Leica Gold. Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Derry Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit derryvalley.net. Nene.

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Salil Chaudhary ji ka tha sangeet, Anand tha film ka naam. 1971 mein ye film aayi thi and Rajesh Khanna ko bahut bahut shohrat mili thi is film se. Is film mein Amitabh Bachchan bhi the and Rajesh Khanna की एक्टिंग वॉज सुपर्ब. आपने देखी फिल्म? नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, अच्छी लगेगी आपको. और मेरे बहुत से साथियों ने मैसेजेस भेजे हैं. चिंतन, आपको बेहद पसंद आया और उससे जुड़ा गीत भी आपने बहुत पसंद किया. थैंक यू एवर सो मच. मैं सबके नाम नहीं लूँगी, लिस्ट बहुत लंबी है. और कुछ एक फरमाइशें भी हैं, जैसे कि मुझे लिख कर भेजे सुदेश टकियार जी ने गीत के लिए, तो आई विल ट्राई टू प्ले दिस सॉन्ग इन द नेक्स्ट आवर. सुनते रहिएगा. तोशी जी, आपने भी एक गाने की फरमाइश की है, कोशिश करूंगी प्रोग्राम में शामिल कर पाऊं.
0: दिस इज द Leica रेडियो नेटवर्क अक्रॉस लंदन, मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स. Leica एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट.
2: जी हाँ, लाइका एक्स्ट्रा न्यू एपिसोड, पॉडकास्ट एपिसोड है 14 एंड टाइटल है द यूके एएफएफ राउंड टेबल, होस्टेड बाय रूबी रजा. गेस्ट हैं द टीम ऑफ यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल एंड ये शुरू हो चुका है. 1 मई में शुरू हुआ और 10 मई तक चलेगा. और अगर आप पुराने एपिसोड भी देखना चाहते हैं तो विल्स एंड प्रोबेट एंड अप्रेंटिस एंड अनफिल्टर्ड, द होम स्कूलिंग डिबेट, ये सब आप देख सकते हैं. जितने भी एपिसोड हो चुके हैं लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट कहाँ पर देख सकते हैं? इट्स अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेज़न, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स.
0: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर. गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव.
3: प्राइवेट रेंटिंग इज एंटरिंग अ न्यू चैप्टर, वन वेयर योर लैंडलॉर्ड कांट एविक्ट यू विदाउट अ वैलिड रीजन. Plus, the rules on rents are clearer, with no bidding wars or unfair rent rises. And now, people receiving benefits, families and those with pets, get a fairer chance. Renting is changing. Find out more at gov.uk/renters rights.
4: Ye hai
5: Leica Gold.
6: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
7: TravelHub, best service with unbeatable price.
8: At all protected.
7: Visit TravelHubWorld.com.
9: Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
10: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
9: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
10: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
9: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
11: Location, location, location.
12: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
11: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
12: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
11: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
12: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
11: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
12: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
11: High appreciation.
12: In Dubai.
13: London Entertainment di sab to vaddi raat aa rahi hai. Four Pillars Entertainments Limited presents ABPD Awards UK 2026. Live performances by Naveen Kundra, Manjeet Bobby, Nikki Sethi, te hor zabardast artists. 9th May, shaam 6 baje, The Center Banqueting Suite, South Hall. For tickets call Manjeet Bhamra at 7956-300-367. ABPD Awards UK 2026. Exclusive radio partner Leica Radio Network.
8: K Furniture stock clearance sale is now on. Enjoy massive discounts in store on Italian beds, bedroom and dining furniture, all available for immediate delivery. Buy a 3 and 2 seater recliner sofa for £999 and get a dining table and 4 chairs absolutely free. Hurry while stocks last. K Furniture, stores at Cricklewood, Harrow and Slough, or visit kfurniture.co.uk.
14: Mantra Holidays wishes you and your family a holiday season filled with joy, laughter and unforgettable moments. As you celebrate, start planning your next adventure with us. Visit www.mantraholidays.co.uk or call 0203-773-633 now. APTA bonded.
15: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
16: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
17: At Skylord Cruise and Holidays, we are cruise specialists,
18: bringing you incredible value and unforgettable luxury cruises worldwide.
17: Call today on 01923-883-100
18: or go to skylordcruiseandholidays.com.
17: Book with confidence.
18: We're Atoll protected.
0: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Laika Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par. Alexa pe bolo play Laika Gold aur online suno laikagold.com pe.
19: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: Tasty Track of the Hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
1: एक से बढ़कर एक प्यारे प्यारे गीत आप सुन रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं, जिसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी की शुक्रगुजार हूँ। लिस्ट बहुत लंबी है, इसलिए मैं सबके नाम नहीं लूँगी, लेकिन हाँ, मैंने सबको जवाब दिया है आपके व्हाट्सएप मैसेजेस का, व्हाट्सएप से ही जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आप बड़ा प्यार करते हैं हम सभी प्रेजेंटर्स से और अपना वक्त हमारे साथ बिताते हैं। थैंक यू ever so much.
2: Leica Radio. Currency updates are sponsored by Lemfi Mobile App. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: राइट भाई, आइए जल्दी से आपको बता दें कि एक्सचेंज रेट क्या है। एक पाउंड के बदले आपको मिल सकता है इंडियन रुपीज़ 128.87 एंड पाकिस्तानी रुपीज़ 377.7, बांग्लादेशी टका 166.39, अफगानी 85.34, श्रीलंकन रुपीज़ 432.86 एंड यूएस डॉलर्स 1.35।
2: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think Lemfi. Lemfi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download Lemfi now. T's and C's apply. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: The gold rate is in the market of £108.68 per gram.
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
3: ये है लाइका गोल्ड।
2: India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
1: राइट, आइए बता दें आपको क्रिकेट के मैदान में कुछ हो रहा है या चहल पहल है या नहीं है, ये लेटर ऑन होने वाली है। राइट, कल तो मैच था पंजाब किंग्स एंड गुजरात टाइटन्स के बीच में, और गुजरात टाइटन्स दे वन बाय 4 विकेट्स एंड विद वन बॉल रिमेनिंग। और आज मैच है मुंबई इंडियंस एंड लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में, और मैच शुरू होगा लंदन यूके टाइम 3 PM। 47th मैच है ये, एंड जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, शुरू होगा, तो हम आपको आंखों देखा हाल भी सुनाते जाएंगे, अपडेट करते जाएंगे। सुनते रहिए, जुड़े रहिए लाइका गोल के साथ।
2: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
1: भी बहुत से मेरे साथियों ने अपने मैसेजेस में लिखा है कि गाने बहुत पसंद आ रहे हैं, और साथ में अपनी फरमाइश भी लिख दी है, तो कुछ एक फरमाइशें मैं प्रोग्राम में शामिल करूंगी इन द नेक्स्ट आवर। आप लिख सकते हैं मुझे, पर डिपेंड करता है कि वो गीत लास्ट कब बजा था हमारे यहाँ से। अगर कल ही या पिछले 4 दिनों में आपने सुना, तो फिर वो गीत मैं शामिल नहीं कर पाऊँगी। और जैसे मैंने आपसे पूछा था कि क्या कर रहे हैं, आज बैंक हॉलीडे है, तो व्हाट आर द प्लान्स, कहीं बाहर जा रहे हैं या फिर घर पर ही हैं, या कोई मेहमान आने वाले हैं, खाना बना रहे हैं, और हमारे प्रोग्रामों ने आसान कर दिया आपका काम, क्योंकि आप आराम से कुकिंग रिलैक्स होकर कर सकते हैं, साथ साथ अगर आपके कानों में अच्छे अच्छे मीठे मीठे गीतों का रस खुलता रहे, तो मेरा साथ भी देते रहिए। मेरे बाद बाली जी भी आएंगे, उनका भी साथ दीजिएगा, फिर सैंडी शाह आ रहे हैं, उनका साथ दीजिए, और फिर शाम को आएंगी अश्विनी। तो इसी तरह से हम आपके साथ रहते हैं।
3: ये है लाइका गोल्ड।
2: The wait is now over. The King of Melody, Kumar Sanu, live in concert. For one night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall.
4: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
2: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
4: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasan.
2: Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education, temporary events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Leica Radio.
5: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
6: No more worries for me or you.
2: Southall Travel, at all protected.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
7: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas Greens start from just 711,000 pounds.
8: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danio. Prime location,
7: high appreciation
8: in Dubai.
9: ZTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith, Hamari Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Leica Radio.
10: Every child deserves a childhood, but many children in India are forced to leave school far too early. Cry UK is helping children stay in school and build brighter futures. Just £25 could help two children continue their education. Visit www.ukcry.org and help to make a difference.
11: Royal announcement by Royal Chai. Chai is loved by all, and so is coffee. Here's presenting a brand new coffee latte in three different and delectable concoctions. Enjoy the royal blend and aroma of coffee in masala, cardamom and garlic flavors. Taste the coffee latte with a quirk by Royal Chai. Now available at all major retailers.
12: Save even more this weekend with bank holiday offers in the Furniture Village sale. We've added new offers on sofas, dining, beds and bedroom furniture. And that's on top of sale prices. Bank holiday offers end Monday at Furniture Village, an award-winning family business.
2: Leica Radio Network, proud to support the Asian Founders Awards by Barclays Eagle Labs and De Montfort University Leicester. Nominate an Asian founder in one of the 9 categories. Log on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app for details. Spring Hits on Leica Radio Network.
13: हाँ या चुप रहूं
14: ना
13: दिल में मेरे आज क्या है
14: क्या है

0: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

पता नहीं मुझे आपने पहले कहीं देखा है या नहीं देखा, या आप किसी अपने को कह रहे थे आपको पहले भी कहीं देखा है। हाँ मुझे देखा तो नहीं, सुना ज़रूर होगा। बहुत अरसे से आपके साथ हूँ और आपका मनोरंजन करती हूँ। आपके प्यार की मैं बहुत दिल से आभारी हूँ कि हमेशा आपने बहुत सा प्यार मुझ तक पहुँचाया है। थैंक यू एवर सो मच। और मुझे मालूम है कि जो मेरे साथी मैसेजेस भेजते हैं वो बेताब रहते हैं इस बात की कि उनका नाम लिया जाएगा, पर इतनी लंबी लंबी लिस्टें होती हैं थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आपने मैसेज भेजा है तो मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि मेरा मतलब आप ही से है, यानी कि आप भी सुन रहे हैं। जो कान मुझे आप उधार देते हैं उसके लिए मैं तहे दिल से आप सबकी शुक्रगुजार हूँ। मैं अक्सर यही कहती हूँ ना कि कुछ भी कीजिए, जो भी काम कर रहे हैं करते रहिए। आयनिंग कर रहे हैं, वॉशिंग कर रहे हैं, घर के कोई भी काम कर रहे हैं, आप ऑफिस में हैं, स्टडी कर रहे हैं, पर अगर कानों में गीतों का रस घुलता रहे तो हर काम आसान हो जाते हैं। अगर इस बात से इत्तफाक रखते हैं आप तो मुझे बता सकते हैं किसने मना किया है। व्हाट्सएप नंबर तो आपका जाना पहचाना है, उसी नंबर पे आप मैसेजेस मुझ तक पहुंचाते रहिए। हाँ एक आपको सूचना देनी है, और वो सूचना ये देनी है कि वेल आप सभी जानते हैं कि बीजेपी और वेल वेस्ट बंगाल में वोटिंग चल रही थी एंड इलेक्शन हो रहे हैं, तो बीजेपी यहाँ पर भी जो हैं ओवरसीज़ फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी यूके, वो आपको इनवाइट कर रहे हैं। यू कैन जॉइन देम इन सेलिब्रेशन हिस्टोरिक ट्रंप और उनकी जो विजय आज हुई है उसके लिए। और क्वींसबरी में स्टेशन के सामने सभी इकट्ठे होने वाले हैं आज शाम 4:30 से 6:30 तक। एंड कम एंड बी पार्ट ऑफ इस इवनिंग सेलिब्रेशंस यूनिटी एंड प्राइड। और ये भेजा है मुझे प्रतिभा जी ने, थैंक यू सो मच। आपके आप भी जा रही हैं वहाँ, और आपने कहा कि सबको देखकर वहाँ बड़ी खुशी होगी, तो अगर आप भी जाना चाहें तो ज़रूर जाइएगा। SBI UK Money Talk. Send money to India with

0: with Yono SBI UK Online and via the SBI UK branch.
1: भी SBI UK के जरिए अगर आप भी पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो क्यों नहीं, किसने मना किया है, बहुत काम आसान है और रेट भी बहुत अच्छा दे रहे हैं. 127 रुपीस 95 पैसा अगेंस्ट 1 ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड और काम बड़ा आसान है. यू कैन गो टू द ब्रांच, वहां जाकर पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Leica Gold. Ye hai Leica Gold.
3: New world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
4: 105 सुपर हिट शोज पछी हवे लंडन मा आवी रह्यु छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी
5: जयज एंटरटेनमेंट लईने आवी रह्या छे सखणा रेजो हसबंड जी
4: लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनी फुल गारंटी शनिवार 27 जून ना 27 पाटीदार समाज वेम्बली पार्क मा रातना 8 वागे टिकट्स बुकिंग माटे विजिट करो eventbrite.co.uk कॉल करो वीडियोरामा अथवा कॉल करो मिस्टर बी 07860280655 सखणा रेजो हसबंड जी
6: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए.
7: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
6: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी.
7: गारंटेड
6: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे.
8: साउथ हॉल ट्रेवल
7: फोन 02085748410.
8: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410. एट ऑल प्रोटेक्टेड.
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
9: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
10: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 02023963-5757. Greens by Danube. Prime location.
9: High appreciation.
10: In Dubai.
11: Every child deserves a childhood, but many children in India are forced to leave school far too early. Cry UK is helping children stay in school and build brighter futures. Just £25 could help two children continue their education. Visit www.ukcry.org and help to make a difference.
12: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands. Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
13: Ab London baithe milega Asian ethnic swad instantly thanks to Jamin Foods.
14: Just add hot water, wait for 5 minutes and taste the ethnic recipes like Sabudana Khichdi, Shira, Poha, Bhaji, veg biryani, dal bhat are ready to serve on your plate.
13: Zero mess, no stress. Same ethnic taste with German foods.
0: Leica Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LeicaGold.com. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
1: भाई इस हफ्ते हमारी आर्टिस्ट ऑफ द वीक हैं आशा पारेख, जिन्होंने बहुत सी फिल्मों में काम किया है. सबसे पहले तो ये बता दूं कि she was honored with the Padma Shri by Government of India for her contribution to the field of cinema and was honored Dada Saheb Phalke Award in 2020. 20. सो हम इन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं. 1992 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था. एंड आज इनकी फिल्म का ये गीत चुनना थोड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि इनकी फिल्मों के सारे गाने बड़े अच्छे थे. जैसे कि अगर आप कहें तो जब प्यार किसी से होता है, भरोसा, जिद्दी, मेरे सनम, तीसरी मंजिल, वाव, लव इन टोक्यो, दो बदन, आए दिन बहार के, ये सारी फिल्में आशा पारेख की हैं. कन्यादान में बहुत अच्छा काम था इनका, उपकार, देन शिकार, इसके साथ साथ आया सावन झूमके में भी आशा पारेख थी, साजन फिल्म में थी, और भी बहुत लंबी लिस्ट है, कारवां याद आ गया मुझे, समाधि, एंड देन मैं तुलसी तेरे आंगन की कैसे भूल सकते हैं. पर मैंने जो गीत आज के प्रोग्राम के लिए चुना है वो बहुत प्यारा गीत है. मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ साथ आप भी ज़रूर इस गीत को गुनगुनाएंगे. शुरू हो जाए.

0: वैसे एक बात कहूँ ना, तो आपको मुझसे कोई शिकायत है और ना ही मुझे आपसे कोई शिकायत है। आप भी मुझे उतना ही प्यार दे रहे हैं जितना कि मैं आप सबको प्यार करती हूँ। थैंक यू ever so much for your love and affection and your appreciation. इसी तरह से अपने messages मुझ तक पहुंचाते रहिएगा।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com. Like a
0: gold. All ek baar एक बार फिर से अपने सभी सुनने वालों को याद दिला दूं कि लाइका रेडियो नेटवर्क इज़ वंस अगेन द एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर ऑफ यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल विच रन्स फ्रॉम 1st of May अंटिल 10th May. दिस ईयर्स थीम इज़ स्टोरीज दैट बाइंड अस, एंड द ओपनिंग फिल्म विल जो थी वो दिखा चुके हैं, पाकिस्तानी फिल्म थी गोस्ट स्कूल, एंड क्लोजिंग फिल्म विल बी विच विल बी ऑन द 10th विल बी इंडियन फिल्म शेडो बॉक्स। सो ज़रूर देखने जाइएगा, एंड यू कैन विजिट यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल एंड देन यू विल गेट ऑल द डिटेल्स। एंड रागा सन के बारे में बता दूँ कि लाइका रेडियो नेटवर्क हैज़ कन्फर्म्ड अ partnership with the premium hospitality brand Ragasan. Detail आपको details देखनी हो तो LigerRadio.com पर आप देख सकते हैं। कुमार सानू लाइव शो भी हो रहा है जिसके बारे में हम आपको बता ही रहे हैं, और सिर्फ एक दिन के लिए वो यहाँ परफॉर्म करने जा रहे हैं, एंड दैट विल बी इन रॉयल अल्बर्ट हॉल, बैंक हॉलीडे मंडे 25th May को। तो याद रखिए ये सारी बातें।
1: दिस इज लाइक अ गोल्ड।
3: दिस सुपर हिट ट्रैक इज ब्रॉट टू यू बाय टिल्डा बासमती राइस विद अ रेंज ऑफ ग्रेन्स एंड फ्लेवर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। यू कैन मेक एवरी मील मेमोरेबल।

0: किशोरदा एंड लता जी की आवाज़ें आपने सुनी फ्रॉम द फिल्म दूसरा आदमी, 1977 की फिल्म थी। चलो दिल में बिठा के तुमसे ही प्यार किया जाए, तो दिल में हम आपके रहते हैं और आप हमारे दिल में रहते हैं, तो हमारा ये प्यार इसी तरह से बना रहे। इसी के साथ मैं एक और सूचना आपके साथ शेयर कर लूँ कि लाइका रेडियो नेटवर्क की सेलिब्रेटिंग SBI UK गोल्ड स्क्रीन ब्रांच की 50th ईयर विद अ स्पेशल लाइव ब्रॉडकास्ट ऑन थर्सडे 7th मई को, ये सुबह 11 बजे शुरू होगी। एंड जॉइन काजल हु होस्ट द स्पेशल सेलिब्रेशन एंड दीप राजा विल बी देयर एज वेल एंड द इवेंट विल टेक प्लेस एट SBI UK गोल्ड स्क्रीन ब्रांच 630632 फिंचली रोड पर है ये, ऑपोजिट गोल्ड स्क्रीन अंडरग्राउंड एंड बस स्टेशन।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
0: TravelHub, best service with unbeatable price.
2: At all protected.
0: Visit travelhubworld.com.
3: Step into the new grand showroom of Kajal's Couture, Southall.
4: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
3: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
4: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Kajal's Couture, now open 7 days a week.
3: Kajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
5: High appreciation.
6: In Dubai.
7: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
8: लंदन, गुड न्यूज, आपका फेवरेट आईटेक अब TRS कैश एंड कैरी साउथ हॉल में। ह्यूज variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices, perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. Full iTech at unit 123 South Bridge Way, South Hall, UB24AX. Once you visit, you come again and again.
9: Psst, you, yeah, you listening to the radio, up to whatever. We just wanted to let you know there's a lotto draw coming up and
10: it could be you.
9: Yeah, what he said. Lotto, from the National Lottery. Rules and procedures apply. Players must be 18 or over.
1: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk.
11: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: बहुत शुक्रिया।
1: शुक्रिया तो आपका अदा करूंगी कि आपने 3 घंटे तक मेरा भरपूर साथ दिया। थैंक यू सो मच। ये गीत मैंने इसलिए भी शामिल किया कि ये फिल्म आज ही के दिन इन 1962 में रिलीज हुई थी, जिसमें काम किया था जॉय मुखर्जी एंड साधना ने। और इसके अलावा जो फिल्में और रिलीज हुई थी उनमें है कोरा कागज़, जो 4 मई 1974 में हुई थी रिलीज, एंड 84 में हुई थी आज ही के दिन फिल्म मकसद, जिसमें जीतू जितेंद्र ने, राजेश खन्ना एंड और भी श्रीदेवी वगैरह आर्टिस्ट थे। अब बस ये था आज का प्रोग्राम। बालीजी इज़ नेक्स्ट, उनका साथ दीजिएगा। मुझे माइक्रोफोन के इस तरफ से अब इजाज़त दीजिए। मेरी अगली मुलाकात कल सुबह होगी 10 बजे, डेट है हमारी, तो याद रखिएगा। तो जुड़ने के लिए तैयार रहिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।
2: Packed for the trip? Gifts? Passport?
3: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
2: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
3: Simzy?
2: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
4: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
5: हेल्लारो अने उम्रो जेवी अक्लेम्ड गुजराती फिल्म्स ना नेशनल एवॉर्ड विनिंग डायरेक्टर अभिषेक शाह फरी एक वार लईने आव्या छे एक इमोशनल कॉमेडी।
6: तमारो तो जिंदगी छे के फिल्म नी वार्ता।
5: एक यू हार्ट जी कई फील करतु नतु, बट वन बीट एंड एवरीथिंग चेंज्ड।
7: तमारो हृदय धबकारो चुकी जाय छे।
5: धबकारो स्टारिंग देवेन भोजानी अने आर्जव देसाई इन सिनेमास नियर यू।
8: बोले तू ये क्या कर रहा है रे?
9: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
8: ये तो बताओ, कोई पता चला?
9: गुरु गुरु, इस 19 जून को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश, क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
8: तो शुभकामनाएं, देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
10: शीघ्र शीघ्र।
9: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन 19 जून। टू बुक कॉल 0208-514-5400। बुक ऑनलाइन एट इवेंटब्राइट।
5: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड।
11: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
12: Atif Aslam live in the UK.
13: Dil diya galla karange na.
11: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
12: Book your tickets now at AXS.
11: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
12: Exclusive radio partner Leica Radio.
14: Discover the best of Portugal with a fantastic Lisbon and Porto Twin City Centre break with Skylord. Fly from the UK and spend 3 nights exploring vibrant Lisbon with its historic streets, trams and riverside views. Then travel by train to beautiful Porto for 3 more nights, discovering its famous wine cellars and charming old town. Skylord prices start from just £339 per person. For multi-centre city break packages with a difference, see skylordcruiseandholidays.com.
11: Call 01923 883 3100. Atoll protected.
15: Mantra Holidays wishes you and your family a holiday season filled with joy, laughter and unforgettable moments. As you celebrate, start planning your next adventure with us. Visit www.mantraholidays.co.uk or call 0203-773-633 now. APTA bonded.
16: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
17: Up next, Bally Brumbat with Gold Afternoons on Leica Gold. The Ravi Sharma Show on Leica Gold.

0: Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
1: No more worries for me or you.
2: Southall Travel, at all protected.
3: Every morning, a shopkeeper opens his doors.
4: Lights on, shutters up, staff ready.
3: But today's customers don't start on the high street.
4: They start on their phones, scrolling Instagram, watching TikTok, searching Google.
3: And if your business isn't there, they don't walk past your shop.
4: They walk into your competitors.
3: Social media today decides who gets seen and who gets forgotten. Is your business part of the conversation or invisible? Visit HeartyHanks.com before your competitors do.
4: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
5: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
6: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
7: Every child deserves a childhood, but many children in India are forced to leave school far too early. Cry UK is helping children stay in school and build brighter futures. Just £25 could help 2 children continue their education. Visit www.ukcry.org and help to make a difference.
8: London, good news! Aapka favorite iTech ab TRS Cash and Carry Southall mein. Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. Full iTech at Unit 123 South Bridgeway, Southall, UB24AX. Once you visit, you come again and again.
9: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए meenarjewelers.com। कॉल 02208767-7627।
10: Like a Gold, London का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर। एलेक्सा पे बोलो प्ले Like a Gold और ऑनलाइन सुनो likeagold.com पे। Feel good track brought to you by Dairy Valley.
11: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: मैंने तो कुछ नहीं किया, आज बैंक हॉलिडे मंडे है इसलिए चटपटे गाने और एकदम मजेदार गाने आपको सुना रहा हूँ। आई होप यू आर लेड बैक एट होम एंड एंजॉयिंग द बैंक हॉलिडे मंडे। मैं हूँ पाली ब्रह्मभट ऑन लाइक अ गोल्ड विद गोल्ड आफ्टरनून्स स्पॉन्सर्ड बाय जैमिन। दैट्स राइट, हैव जैमिन स्नैक्स एंड एंजॉय बैंक हॉलिडे मंडे। अभी मैं एक ही बात कहूंगा, नेक्स्ट गाना जो है फॉर ऑल मुकेश फैंस एंड इट्स अ ट्रीट फॉर देम। इट्स अ सॉन्ग फ्रॉम फिल्म जिंदगी और तूफान एंड मुकेश जी ने गाया एक हसरत थी के आंचल। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: दिस इज द नंबर वन एशियन कमर्शियल ग्रुप इन लंदन कंसिस्टिंग ऑफ लाइका रेडियो एंड लाइका गोल्ड।
0: लिरिक्स है राम अवतार त्यागी के एंड मुकेश जी ने गाया इतनी खूबसूरती से जिंदगी और तूफान। 1975 का गाना है, एक साल पहले इस रेडियो स्टेशन पे सुनाई दिया था।

0: माय गॉड, कितने मैसेजेस आ गए. एवरीबॉडी लव्ड इट एक्सेप्ट फॉर राजेंद्र सिंह कलरा. ओह डियर, इतना प्यारा गाना है राजेंद्र सिंह जी. मैं तो आपकी नजर करने वाला था. कोई बात नहीं, कोई और गाना रख देंगे आपकी नजर. अगला गाना भी एक कानों पे थोड़ा नया लगेगा. फिल्म है नसीहत. फॉर बैंक हॉलीडे मंडे आई एम गिविंग यू सॉन्ग्स दैट आर स्लाइटली रेयर. फिल्म है नसीहत, आशा भोसले ने गाया है. सुनिएगा. It says boy oh boy.
1: Vali Brumbat on Gold Afternoons. Like a
0: gold. अच्छा टाइटल है boy oh boy. ओपी नैयर का संगीत.
2: Boy oh boy.

All right. What a beautiful kavali, eh? You in a kavali mood on Bank Holiday Monday? Ek aapke messages se lagta hai, haan. Toh main dusri ek kavali bhi sunaunga during the year. And here we go, Victoria 203. One of my favorite tunes in the background there. Bullo Si Rani, unka sangeet tha, aur Shevan Rizvi ne iski lyrics likhi thi. क्या लिरिक्स लिखी, मतलब के इनको तालियों से स्वागत करते हैं. यस, ब्यूटीफुल कवाली रिटन फिल्म है अल हिलाल एंड इस्माइल आजाद कवाली पार्टी. आई विश वी कुड गेट मोर सॉन्ग्स ऑफ इस्माइल आजाद कवाली पार्टी. मैंने उनका एक शो की क्लिप मैंने देखी थी और एक गाना था कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तो वो गाने का इन्होंने उस गाने को बदल कर इन्होंने कव्वाली गाई थी, जैसे कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल

0: है, तो उन्होंने बदल दिए लिरिक्स और गाने लगे, अभी अभी मेरे दिल में ख्याल आया है कि जैसे मुझको बनाया गया है तेरे लिए, तू अब उससे पहले तो गुड़ियों से खेलती होंगी, तू अब उससे पहले तो गुड़ियों से खेलती होंगी, दुल्हन बना के सजाया गया है मेरे लिए। ये सब तो इतना मजा आया था वो कव्वाली सुनकर, और पब्लिक हंस पड़ी थी, एंड ही चेंज द लिरिक्स एंड द स्टाइल ऑफ द सॉन्ग एंड ऑल दैट। आई विश आई कैन गेट दैट सॉन्ग फ्रॉम समवेयर। मैं हूँ बाली ब्रह्मभट्ट on Like a Gold with Gold Afternoons, entertaining you for Bank Holiday Monday. It's available on 1035 medium wave, DAB, Alexa, Google Home and likeagold.com. आगे जाते हुए और भी गाने बढ़िया बढ़िया है, तो मैं बातें करना कम और काम ज्यादा।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling today could get you up to 128 Indian rupees. Remember to make your transfers via branch, online or by using the Yono SBI UK mobile app.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gold Afternoons with Bali Brambert. Proudly sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India, bringing authentic flavors to your table every day. Find Gemin at Asian stores near you.
3: 105 सुपर हिट शोज पछी हवे लंडन मा आवी रह्यु छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी जयज एंटरटेनमेंट लईने आवी रह्या छे सखणा रेजो हस्बंड जी लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनी फुल गारंटी फ्राइडेज 26 जून 27 पाटीदार समाज वेम्बली पार्क मा रातना 8 वागे टिकट्स बुकिंग माटे विजिट करो eventbrite.co.uk कॉल करो वीडियो रामा अथवा कॉल करो मिस्टर बी 07860280655 सखणा रेजो हस्बंड जी
1: Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
2: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
1: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women.
2: Plus beautiful jewellery and accessories. Find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
1: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear. All in one destination.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
4: High appreciation.
5: In Dubai.
6: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
7: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
6: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
7: गारंटेड।
6: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
7: फोन 02085748410।
6: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
8: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply।
9: Mantra Holidays wishes you and your family a holiday season filled with joy, laughter and unforgettable moments. As you celebrate, start planning your next adventure with us. Visit www.mantraholidays.co.uk or call 02033736333 now. APTA bonded.
10: Mantra Holidays. What's your travel mantra? माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप,
11: टेबल पे सिर्फ एक हीरो, जैमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स,
10: मसालेदार मसाला, टैंगी टोमेटो, सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर, ऑल इन जैमिन्स पोटैटो चिप्स।
11: जैमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स, देसी स्वैग इन एवरी बैग।
12: Save even more this weekend with bank holiday offers in the Furniture Village sale. We've added new offers on sofas, dining, beds and bedroom furniture. And that's on top of sale prices. Bank holiday offers end Monday at Furniture Village, an award-winning family business.
13: Like a goal. Officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagoal.com.
14: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
15: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: सैटको माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स।
1: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
2: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
1: ये तो बताओ, कोई पता चला?
3: गुरु गुरु, इस 19 जून को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश, क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
1: तो शुभकामनाएं, देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
4: शीघ्र शीघ्र।
3: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन 19 जून। टू बुक कॉल 0208-514-5400, बुक ऑनलाइन एट Eventbrite।
5: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका Gold.
6: Are we there yet?
7: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
8: Relax, I've booked the Uber already.
7: How? My roaming isn't even working yet.
8: I switched to Simzy before we left London.
7: Simzy? Since when are you the tech expert?
8: Since I decided I want a stress-free holiday.
9: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
10: T's and C's apply.
11: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
12: Atif Aslam live in the UK.
11: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
12: Book your tickets now at AXS.
11: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
12: Exclusive radio partner Leica Radio.
13: London, good news! Aapka favorite iTech ab TRS Cash and Carry South Hall mein. Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. For iTech at Unit 123 South Bridgeway, South Hall UB2 4AX. Once you visit, you come again and again.
14: साढ़े दसवें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का पवित्र जन्म स्थान तखत श्री हरिमंदर जी पटना साहिब दे लाइव दर्शन देखो सिर्फ जी पंजाबी स्काई 769 ते वर्जिन मीडिया 811 ते रोज सवेरे 3 बजे तो 8 बजे तक सिर्फ जी पंजाबी ते ही।
15: Save even more this weekend with bank holiday offers in the Furniture Village sale. We've added new offers on sofas, dining, beds and bedroom furniture. And that's on top of sale prices. Bank holiday offers end Monday at Furniture Village, an award-winning family business.
16: At Skylord Cruise and Holidays, we are cruise specialists,
17: bringing you incredible value and unforgettable luxury cruises worldwide.
16: Call today on 01923 883 100
17: or go to skylordcruiseandholidays.com.
16: Book with confidence.
17: We're Atoll protected.
18: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com।
19: Across London, this is Bally Brambat on Leica Gold.

0: भूपिंदर जी ने गाया घरौंदा। अभी एक एक इंसान है जो सबको मैसेजेस भेजते हैं, कुछ जलसा समथिंग, वो सबको व्हाट्सएप पे मैसेजेस जो भेजते हैं ना, तो उन्होंने भूपिंदर जी के बारे में कुछ कहा था कि उन्होंने गाने जो गिटार पे बजाए हैं तो उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। वो गलत इन्फॉर्मेशन है, उन्होंने कहा प्रेम कौन सा गाना था, चिंगारी कोई भड़के। अभी चिंगारी कोई भड़के भूपिंदर जी ने नहीं बजाया था। अगर आपको ये मैसेज मिले तो जान लेना वो भानु गुप्ता ने बजाया था वो। हाँ जी,
1: फील गुड क्लासिक्स ऑल डे लाइक अ गोल्ड।
0: हाँ जी, भूपिंदर जी ने गिटार बजाया था चुरा लिया है तुमने जो दिल को, दूसरा था आशा भोसले जी का गाना दम मारो दम, उसमें, लेकिन उसमें नहीं बजाया था जो अमर प्रेम का जो गाना था। अगर आपको ये मैसेज मिले तो जान लेना गलत इन्फॉर्मेशन है।

वाह क्या गाया किशोर दा ने और लता जी ने, खट्टा मीठा 1978। नेक्स्ट इज रफी साहब।

चले नहीं जाना, आप मत चले जाना और मैं भी नहीं जाऊंगा, बिकॉज बैंक हॉलीडे मंडे चल रहा है और गाने भी धुआंधार हो रहे हैं। नौशाद जी का संगीत था डी एन मधोक। यस, एक तो मधोक जी ने गाना लिखा फिल्म रतन 1944, सो 1995 से मैं 1944 पे ले गया। फिल्म राजा का गाना जो था अलका याग्निक और उदित नारायण का, अखियां मिलाऊं कभी, एंड ये था अखियां मिला के, दोनों अखियों वाले गाने, लेकिन देखो 50 साल का डिफरेंस है वहाँ पे, है ना। जोहरा भाई अंबाला वाली, शी इज़ द वन हु सैंग द सॉन्ग एंड व्हाट अ वॉइस, एंड मज़ा आता है, एक ताजगी मिलती है। And I hope you're having a wonderful time having a siesta or having a wonderful time on the bank holiday Monday. This is Like Our Gold with Gold Afternoons. Main hoon Bali Brahmbhatt, aapki khidmat mein, available on 1035 medium wave, DAB, Alexa, Google Home and likeagold.com. Aap chutti mana rahe hain and

0: म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर, DAB डिजिटल रेडियो पर, एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो लाइकागोल्ड.com पे।
1: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: The Furniture Village sale. We've added new offers on sofas, dining, beds and bedroom furniture. And that's on top of sale prices. Bank holiday offers end Monday at Furniture Village, an award-winning family business.
1: Like a Gold. London का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो लाइकागोल्ड.com पे. This song is brought to you by Kumar Shanu live at Royal Albert Hall with exclusive radio partner Leica Radio. One date only, May 25th.

0: मंचूरियन, मसाला, पेरी पेरी और शेजवान विद बेस्ट क्वालिटी एंड सेम एथनिक टेस्ट।
1: जयमिन फ्रायंस अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
2: Cool Drive with Sandy Shah.
3: Oh yeah.
2: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
4: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
1: Gold Drive with Sandy Shah. India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
2: So they're in Wakhandi Stadium. Lucknow Super Giants played Mumbai Indians. And Lucknow Super Giants scored 228 for the loss of 5 wickets. Mumbai Indians in return are after 16.1 overs are 194 for 3, meaning they need another 35 runs off 23 balls.
1: India cricket score updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorised and regulated by the FCA. This is Sandy Shah on Gold Drive.
3: Like a gold.
4: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रैवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
5: ट्रैवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
4: एट ऑल प्रोटेक्टेड
5: विजिट travelhubworld.com
6: Location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Tanyo, a premium collection of townhouses and villas.
7: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
6: High appreciation.
7: In Dubai.
8: London Entertainment di sab to vaddi raat aa rahi hai. Four Pillars Entertainments Limited presents ABPD Awards UK 2026. Live performances by Naveen Kundra, Manjeet Bobby, Nikki Sethi, te hor zabardast artists. 9th May, shaam 6 baje, The Center Banqueting Suite, South Hall. For tickets call Manjeet Bhamra at 7956-300-367. ABPD Awards UK 2026. Exclusive radio partner Laika Radio Network.
9: हिल्लारो अने उम्रो जेवी अक्लेम्ड गुजराती फिल्म्स ना नेशनल एवॉर्ड विनिंग डायरेक्टर अभिषेक शाह फरी एक वार लेने आव्या छे एक इमोशनल कॉमेडी
10: अतमार तो जिंदगी छे के फिल्म नी वार्ता
9: एक यू हार्ट जी कई फील करतु नतु
10: अरे वार्ता अधूरी छे भाई
9: बट वन बीट एंड एवरीथिंग चेंज्ड
11: तमारो हृदय धबकारो चूकी जाय छे
9: धबकारो स्टारिंग देवेन भोजानी अने आरजव देसाई
12: लोकेशन अहिना करेला अहिज भोगवाना छे
9: इन सिनेमास नियर यू
13: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com टीज एंड सीज अप्लाई
14: Mantra Holidays wishes you and your family a holiday season filled with joy, laughter and unforgettable moments as you celebrate start planning your next adventure with us visit www.mantraholidays.co.uk or call 0203-773-633 now apta bonded
15: mantra holidays what's your travel mantra
16: London, good news! आपका फेवरेट iTech अब TRS Cash and Carry South Hall में huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. Full iTech at Unit 123 South Bridgeway, South Hall, UB24AX. Once you visit, you come again and again.
1: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Gold Drive with Sandy Shah.
0: अपने बिजनेस को UK के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइक आर रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk.
17: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with

0: Gold Drive with Sandy Shah. Oh yeah. Like a Gold, traffic and travel.
1: This is Martin with your travel. On the M4 eastbound exit slip road at Junction 3 Hayes, the earlier accident has been cleared and traffic is starting to thin out there. The A406 North Circular Road easing southbound at the Hanger Lane Gyratory. The A4020 Uxbridge Road heavy between the A312, the Parkway and Southern Park. A40 Western Avenue slowing westbound before you get to Gypsy Corner. A316 Chertsey Road busy eastbound as you head from Apex Corner to Twickenham Bridge to the Tube, and severe delays on the Piccadilly line this evening between Acton Town and Uxbridge, and minor delays on the rest of the line due to an earlier signalling problem at Turnpike Lane. That's your latest traffic and travel.
2: लायका गोल्ड
3: 105 सुपर हिट शोज पछी हवे लंडन मा आवी रह्यु छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी जयज एंटरटेनमेंट लईने आवी रह्या छे सखणा रेजो हसबंड जी लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनी फुल गारंटी फ्राइडे 26 जून 27 पाटीदार समाज वेम्बली पार्क मा रातना 8 वागे टिकट्स बुकिंग माटे विजिट करो eventbrite.co.uk कॉल करो वीडियो रामा अथवा कॉल करो मिस्टर बी 07860280655 जो हस्बैंड जी
4: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
5: अरे गुरु आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
4: ये तो बताओ कोई पता चला?
5: गुरु गुरु
6: इस 19 जून को द प्रिंस रीजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
4: साधु तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
7: शीघ्र शीघ्र
6: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रीजेंट होटल ऑन 19 जून। टू बुक कॉल 0208-514-5400, बुक ऑनलाइन एट Eventbrite।
2: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड। वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
8: हेरल्ड न्यू वर्ल्ड ऑफ इको friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit Herald Packaging.
9: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344-24 hour line.
10: At Skylord Cruise and Holidays, we are cruise specialists,
11: bringing you incredible value and unforgettable luxury cruises worldwide.
10: Call today on 01923-883-100
11: or go to skylordcruiseandholidays.com.
10: Book with confidence.
11: We're Atoll protected.
12: From breathtaking wedding jewellery to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewellers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewellers, the diamond specialists. Call 0208-767-2142.
0: Next, Ashwini, in for Anissa Nasir on The Evening Show on Leica Gold. Leica Radio, finalist at the Radio Academy Arias 2026.

क्या बात है भाई, दो बैक टू बैक सॉन्ग्स के बाद में आप और हम साथ में हाजिर हैं द इवनिंग शो पे द अश्विनी में। तीन फीचर्स यादों की बारात इन फर्स्ट आवर, सेकंड आवर में इमोशन ऑफ द डे एंड थर्ड आवर है गजल या कवाली। पूछें आप सबसे कैसे हैं आप सब। हाँ, आई एम श्योर आज तो जितने मैंने, अच्छा आप सोचो मैंने तोहफा तोहफा क्यों प्ले किया, बैंक हॉलीडे है मतलब शॉपिंग वॉपिंग हुई इसलिए तोहफा तोहफा तोहफा। अगर आपने नहीं भी लाया होगा तो आपके स्पाउस, आपके पार्टनर, आपके बच्चे, आपके मम्मी डैडी सबने कहा कि नहीं नहीं नहीं चलो तोहफा तोहफा तो लेने जाएंगे। कैसा रहा आज का दिन, बैंक हॉलीडे है तो सैटरडे संडे मंडे तीन दिन की छुट्टी, टैंग टैंग तीन दिन की छुट्टी तेरी मेरी कट्टी, दिस इज़ व्हाट वी यूज्ड टू से टू आवर फ्रेंड्स जब हम स्कूल में थे तब। बट मेरी और आपकी बिल्कुल कट्टी नहीं हो सकती बिकॉज मैं मंडे टू फ्राइडे शाम 7 से 10 आ जाती हूँ आप सबके मनोरंजन के लिए। अच्छा, आते से कोई ना कोई होमवर्क तो ज़रूर देना है मैंने आपको, है ना। तो आज ज़रा दुख दर्द पीड़ा के बारे में बात करेंगे। नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, बहुत सीरियस वाली दुख दर्द पीड़ा नहीं है कि आज मेरा हाथ दुख गया मेरा पैर दुख गया। नो नो नो नो, दिस दुख दर्द पीड़ा इज़ अबाउट चाय एंड बिस्कुट एंड पकौड़ा एंड चटनी। आपको सबसे ज़्यादा दुख कब होता है, जब आप बिस्किट चाय में डुबो डुबो के खा रहे

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: तो भाई अटेंडेंस रजिस्टर जो है वो खुल चुके हैं. लोग अपनी अपनी अटेंडेंस लगा रहे हैं कि बता रहे हैं जब बिस्किट टूट के चाय में गिर जाता है तो ज़्यादा बुरा लगता है या फिर पकौड़ा के साथ में चटनी ख़त्म हो जाती है. तो एक्चुअली मैं अगर बताऊँ तो दोनों का भी टाई चल रहा है. मतलब लोग आधे लोगों ने कहा कि जब बिस्किट टूट के गिर जाता है ना चाय में तो बड़ा दुख हो जाता है, और कुछ लोग कहते हैं कि अरे यार जब चटनी ख़त्म हो जाए तो मतलब पकौड़ा कैसे आधा अधूरा लगता है ना ऐसे, इसलिए उनका दुख उन्होंने बयां किया. एनीवेज बैंक हॉलीडे है, आप लोगों ने अपना दिन पूरा एंजॉय किया होगा. और अभी शाम की आपकी ये जो एंटरटेनमेंट है ये तो आपका लाइका गोल्ड रेडियो लंदन में एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर में आपका एंटरटेनमेंट का पूरा का पूरा 3 घंटे यहाँ पे संगीत में महफिल जमा के रखने का जो एक जिम्मेदारी है वो आपके इस प्यारे पारिवारिक म्यूजिकल रेडियो ने लिया है. ओके, डू यू नो व्हाई डू वी हैव दीज बैंक हॉलीडेज? ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था? सो दिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन यूके इन 1871 बाय सर जॉन लुबक टू प्रोवाइड वर्कर्स विद गारंटीड पेड ऑफ टाइम ब्रेकिंग द रेलेंटलेस वर्क पेस ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. अब लोगों को काम में से थोड़ी फुर्सत मिल जाए ना तो इसीलिए उन्होंने ये शुरू किया था. ये इनिशियली इंट्रोड्यूस किया गया था 4 स्पेसिफिक डेज के लिए व्हेन बैंक्स वर क्लोज्ड एंश्योरिंग फाइनेंशियल सिस्टम्स पॉज्ड व्हाइल एवरीवन विल बी ऑफर्ड, शॉप का जो स्टाफ है उनको भी लेजरली टाइम अपनी फैमिली के लिए अपने लिए मिले, इसीलिए बैंक हॉलीडेज एक्चुअली शुरू किए गए थे. अब उसका देखो ना उन्होंने शुरू किस हिसाब से किया था कि भाई लोगों को लेजरली टाइम मिले, पैसा वैसे ना बैंक नंबर्स इनका गेम जरा कम खेला जाए, लेकिन देखो क्या हो रहा है, हम तो जाके दे दनादन शॉपिंग करके आते हैं.
3: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
0: द इवनिंग शो विद अश्विनी.

0: Laika Radio Network is celebrating SBI UK Golders Green Branch's 50th year with a special live broadcast on Thursday, 7th May from 11 a.m. Join Kajal, who hosts the special celebration. Deep Raja will also be in attendance. The event will take place at SBI UK Golders Green Branch, 630-632 Finchley Road, opposite Golders Green Underground and Bus Station. तो जरूर जाइएगा और हमारे प्यारे प्यारे काजल और दीप राजा से जरूर मिलेगा. नेक्स्ट, आप सभी का फेवरेट फीचर यादों की बारात. वॉल्यूम अप रखिए हावड़ा ब्रिज से आशा भोसले की आवाज में. आइए मेहरबान.
1: Laika Radio, finalist at the Radio Academy Arias 2026. यादों

आता है, अरे अपने बाप का क्या जाता है। जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले बोले, हम तो कुछ नहीं बोलेगा।

0: लगा तो
1: ये है Leica Gold. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
2: For £1 you'll get 128 rupees 87 paise Indian rupee and 377.19 Pakistani rupee, 166.09 Bangladeshi taka, 85.85 Afghani, 432.49 Sri Lankan rupee.
1: Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Leica Gold. Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
2: Gold is currently trading at £108.44 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com. Or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
2: इट्स 45 मिनट्स पास्ट 7. आप सभी ने ट्यून इन किया है आपका पसंदीदा आपका अपना लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. दिस शो इज़ द इवनिंग शो विद अश्विनी और शाम 7 से 10 रहता है आपका और मेरा साथ. बहुत सारे लोग अपने किचन के मेन्यूज़ जो है उसके पिक्चर मुझे भेज रहे हैं. भाई आई एम प्योर वेजिटेरियन तो जो भी वेजिटेरियन डिशेज बनी है उसके पिक्चर्स भेजो मुझे आराम से भेजो. बाय द वे मैं तो खाना वाना खा के आई हूँ और गर्मा गर्म अदरक इलायची वाली चाय का लुत्फ उठाते उठाते आप लोगों के साथ में गपशप भी यहाँ कर रही हूँ. नेक्स्ट ट्रैक आप सबके लिए जो लेके आए हैं वो है किशोर कुमार की आवाज़ में रॉकी फिल्म से. तो अगर वॉल्यूम अप करना चाहते हैं तो ज़रूर बढ़ा दीजिए. बहुत से लोग अभी भी अपनी बिस्कुट डूब जाने का दुख बयां कर रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि यार चटनी के बिना क्या जीना है. वो है ना वो गाना जीना क्या अजीब प्यार प्यार बिना वैसा है कि पकौड़े खाना क्या चटनी के बिना. आई नो है ना ऐसे कुछ अलग से और अजीब से क्वेश्चन आ जाते तो हम भी सोचते हैं कि अरे यार मैंने तो कभी सोचा नहीं था. तो जो आपने नहीं सोचा था वही तो ज़िंदगी आपको देती है चाहे आप हो चाहे मैं हूँ. ज़िंदगी की नहीं हमारे लिए क्या प्लान करके रखा है हमें नहीं पता. चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते कुछ गाने.
1: Ashwini, brightening up your week.

0: India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
1: IPL मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच हुआ जिसे मुंबई इंडियंस won by 6 wickets.
0: India cricket score updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
1: चलिए मिला लेते हैं घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 51 मिनट्स पास्ट 7। आप सभी ने ट्यूनिंग किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी, जिसे आप लोग सुन रहे हैं पिछले दो सप्ताह से। दिस इज माय थर्ड वीक विद ऑल ऑफ यू एंड हम आए हैं आपके लिए लेके कुछ अमेजिंग फीचर्स। फर्स्ट आवर का फीचर यादों की बारात, आप सबको सुना दिया। सेकेंड आवर का फीचर है इमोशन ऑफ द डे, यानी कि मोटिवेशनल मंडे में कौन सा गीत सुनाएगी अश्विनी, बस कुछ ही देर में बताते हैं। आप लोगों के बैक टू बैक मैसेजेस आते हैं, आप लोग शो को कितना एंजॉय कर रहे हैं आप लोग ये बता रहे हैं, आज कितनी शॉपिंग की ये बता रहे हैं, और आज कोई कहीं नहीं है, घर में बैठ के सिर्फ टीवी देखा है और अब शाम में रेडियो सुन रहे हैं ये भी बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आखिरी गीत आप सबको सुना रहे हैं गबन फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में, और यही गीत हमें ले चलेगा 8 o'clock की न्यूज़ की तरफ। आपका और मेरा साथ पूरे और दो घंटे के लिए रात 10 बजे तक यहीं पर आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन पर।
0: This is Ashwini, in for Anisa Nazir, on The Evening Show.
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
3: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 02 03963 5757. Greens by Daniel, prime location,
2: high appreciation
3: in Dubai.
4: At Skylord Cruise and Holidays, we are cruise specialists,
5: bringing you incredible value and unforgettable luxury cruises worldwide.
4: Call today on 01923 883 100
5: or go to skylordcruiseandholidays.com.
4: Book with confidence.
5: We're Atoll protected.
6: Packed for the trip? Gifts? Passport?
7: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
6: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
7: Simzy?
6: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
8: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
9: लंदन एंटरटेनमेंट दी सब तो वड्डी रात आ रही है। फोर पिलर्स एंटरटेनमेंट्स लिमिटेड प्रेजेंस ABPD अवार्ड्स UK 2026। लाइव परफॉर्मेंसेस बाय नवीन कुंद्रा, मंजीत बॉबी, निकी सेठी ते होर जबरदस्त आर्टिस्ट। 9th मई शाम 6 बजे, द सेंटर बैंकवेटिंग सुइट साउथ हॉल। फॉर टिकट्स कॉल मंजीत भमरा एट 7956300367। ABPD अवार्ड्स UK 2026 एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क। CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage, 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, like our radio.
10: Every child deserves a childhood, but many children in India are forced to leave school far too early. Cry UK is helping children stay in school and build brighter futures. Just £25 could help 2 children continue their education. Visit www.ukcry.org and help to make a difference.
11: London, good news! Aapka favorite iTech ab TRS Cash and Carry South Hall mein. Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better price. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. For iTech at Unit 123 South Bridgeway, South Hall UB24AX. Once you visit, you come again and again.
12: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel, and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy. Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
13: The Evening Show with Ashwini. Like a
0: Gold. London's biggest classics all day. This is Like a Gold.

पुअर गर्ल्स क्यों गंगाराम के पीछे पड़ी है, अगर नहीं उनके समझ में आ रहा है तो रहने दो ना यार। मतलब पूरा गाना मैं भी सुन रही हूँ कि अच्छा अब इनको ये पटेगा, अब उनको वो पटेगा, ना ना ना वो कह रहे मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। पहचान फिल्म से सुनाया आप सभी।

0: घर के वो एक छोटा सोफा जो रखा हुआ है बड़ी सी विंडो के सामने, हम दोनों माँ बेटी वहाँ पे बैठे और रास्ते पे से कोई भी आते जाते दिखता है। एंड आई एम श्योर कि आप सभी ने, पेट पेरेंट्स ने ये ट्राई किया होगा या शायद करते भी होंगे रेगुलरली कि कोई ऐसे जाते हुए दिखे तो अरे ये कौन आया, एंड द मोमेंट यू से ये कौन आया। सो ऑब्वियसली पीचेस, आई एम अ मराठी गर्ल सो आई टॉक इन मराठी विद पीचेस एंड सेइंग अरे बक कौन आला है। सो द मोमेंट शी हियर्स दैट शी इज लाइक ओ माय गॉड एंड शी स्टार्ट्स बार्किंग। एंड हम दोनों की ये जो लैंग्वेज है ना, ये हमें ही पता है कि हम जब कहते हैं कि आ जा गॉसिप करें बहन बैठ। So, अगर आपके अभी भी पेट्स हैं, क्या आप और किसी वे में गॉसिपिंग चलती है आपकी या आप गपशप करते हैं? आई डू अ होल लॉट ऑफ गपशप विथ माय पीचेस। आपके यहाँ पे भी पेट है, कौन से पेट्स हैं जरूर बताइएगा, और आप भी क्या गपशप करते हैं, मेरी कैटेगरी में आते हैं मुझे जरूर बताइएगा।
1: Like a gold, part of the largest Asian commercial radio network in the UK. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling today could get you up to 128 Indian rupees. Remember to make your transfers via branch, online or by using Yono SBI UK mobile app.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: This is Laika Gold.
2: मिला लेंगे घड़ियां, एक बार देखते हैं टाइम कितना हुआ। इट्स 32 मिनट्स पास्ट 8। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी विद 3 new features। फर्स्ट आवर यादों की बारात जो हम सुन चुके हैं, सेकेंड आवर इज इमोशन ऑफ द डे एंड थर्ड आवर इज गजल या कवाली। अब भाई आप सबको बता दें कि लाइका रेडियो नेटवर्क इज सेलिब्रेटिंग SBI UK गोल्डर्स ग्रीन ब्रांचेस 50th ईयर विद अ स्पेशल लाइव ब्रॉडकास्ट ऑन थर्सडे 7th of May फ्रॉम 11 AM। हमारी अपनी काजल जाने वाली हैं जो होस्ट करेगी ये स्पेशल सेलिब्रेशन। दीप राजा भी वहाँ पे आपसे मिलने वाले हैं। द इवेंट विल टेक प्लेस एट SBI UK गोल्डर्स ग्रीन ब्रांच, 630-632 फिंचले रोड, अपोजिट गोल्डर्स ग्रीन अंडरग्राउंड एंड बस स्टेशन। तो ज़रूर जाइएगा और मिलेगा हमारे अमेजिंग प्रेजेंटर्स से। अब समय हो गया है कि आप सबको इमोशन ऑफ द डे का गीत सुनाया जाए। आज है मोटिवेशनल मंडे एंड मोटिवेशन हम सबके लिए, वही ह्यूमंस हैं, लाइफ जी रहे हैं, तो जिंदगी से रिलेटेड ही ये बहुत ही प्यारा गीत है। मुझे बड़ा रिफ्रेशिंग लगता है ये सॉन्ग। सौतन फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में।
0: This song is brought to you by Kumar Shanu, live at Royal Albert Hall with exclusive radio partner Laika Radio. One date only, May 25th.
3: Emotion of the day.

0: Leica Gold.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
2: For one British pound, you'll get 128.93 Indian rupee, 377.41 Pakistani rupee, 166.16 Bangladeshi taka, 85.291 Afghan Afghani, 432.69 Sri Lankan rupee.
3: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
2: Gold is currently trading at £108.44 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
2: चलिए मिला लेते हैं घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। 8:49 आप सभी ने ट्यून इन किया है आपका अपना पसंदीदा पारिवारिक म्यूजिकल रेडियो वी आर लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। शो का नाम है द इवनिंग शो विद अश्विनी। आप सभी के मनोरंजन के लिए मंडे से फ्राइडे तक शाम 7 से 10 रहता है आपका मेरा साथ। अलग अलग नए नए फीचर्स लेके आपके लिए हाजिर हुए हैं हम। पहला आवर है यादों की बारात, सेकेंड आवर है इमोशन ऑफ द डे एंड थर्ड आवर है गजल या कव्वाली। तो आज है मंडे, बताइए कैसे और क्या प्ले कर सकती हूँ मैं। गज़ल प्ले कर सकती हूँ, कव्वाली प्ले कर सकती हूँ। मोटिवेशनल मंडे का गाना आप सभी को बहुत बहुत पसंद आया। जैसे मैंने कहा कि पद्मिनी कोल्हापुरी पे ये गीत फिल्माया गया था और बहुत ही रिफ्रेशिंग सॉन्ग लगता है मुझे। और पद्मिनी कोल्हापुरी वो जो ब्लू ड्रेस में घूमते हुए, ओह माय गॉड, शी लुक्स रियली गॉर्जियस ना, और बहुत अच्छा लगता है ये गीत। ये भी अगेन मैंने चित्रहार छाया गीत में देखा हुआ था, तो हमेशा ये जहन में रहता है। धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं आगे। नेक्स्ट आवर जो है अगेन आप सभी का बड़ा पसंदीदा आवर है विद गज़ल या कव्वाली सुनने का। लास्ट ट्रैक इस आवर का जो है वो मैं लेके आई हूँ लता मंगेशकर की आवाज़ में, एंड दैट इज समाधी फिल्म से बंगले के पीछे। आई नो दैट इज सच अ फैंटास्टिक ट्रैक ना। अब आप कह रहे हैं कि आज शॉपिंग करके थक गए, बस थोड़ी देर में सो जाएंगे। नहीं, अभी नहीं, एक घंटा और बाकी है। मेरा साथ देते चलिए।
1: Leica Radio 90s, Leica Radio Punjabi, Leica Gold 2, now available on the Leica Radio mobile app and Alexa. This is Ashwini in for Anisa Nazir on the evening show.
4: Skylord Cruise and Holidays, we are cruise specialists,
5: bringing you incredible value and unforgettable luxury cruises worldwide.
4: Call today on 01923 883 100
5: or go to skylordcruiseandholidays.com.
4: Book with confidence.
5: We're atoll protected.
6: हिल्लारो अने उम्रो जेवी अक्लेम्ड गुजराती फिल्म्स ना नेशनल एवॉर्ड विनिंग डायरेक्टर अभिषेक शाह फरी एक वार लेने आव्या छे एक इमोशनल कॉमेडी।
7: तमारो तो जिंदगी छे के फिल्म नी वार्ता।
6: एक यू हार्ट जी कई फील करतु नतु, बट वन बीट एंड एवरीथिंग चेंज्ड।
8: तमारो हृदय धबकारो चुकी जाय छे।
6: धबकारो स्टारिंग देवेन भोजानी अने आर्जव देसाई इन सिनेमास नियर यू।
9: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner like our Radio.
10: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
11: फ्रॉम सीनिक ब्राइट्स इन स्कॉटलैंड, द लाइक District, Devon and Cornwall to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands. Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
12: From breathtaking wedding jewellery to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewellers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewellers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
13: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy! Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
14: Seven stations, one podcast, one mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales@leicamedia.co.uk.
15: The Evening Show with Ashwini.
14: Reminisce those classics on Leica Gold.

0: Bank Holiday Fever on Like.
1: मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 13 मिनट्स पास्ट 9। आप सभी ने ट्यून इन किया है आप सभी का पसंदीदा द इवनिंग शो विद अश्विनी। दो बड़े ही अमेजिंग गीत आप सबको सुनाए लावारिस फिल्म से, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में कब के बिछड़े, और उसके पहले 90s के बच्चे आई एम श्योर आप सभी खुश हो गए होंगे हम आपके हैं कौन इस फिल्म से मौसम का जादू। बिल्कुल मौसम का जादू हम सब पे अब छाने वाला है, क्योंकि धीरे धीरे मौसम जो है बड़ा सुहाना हो रहा है। इट्स गेटिंग वार्म डे बाय डे। हाँ बिल्कुल, हम लोग ब्रिटिश वेदर में रहते हैं तो कभी भी ठंड आ जाती है, तो जैकेट्स हमेशा अपने साथ में। इस कंट्री में दो चीज़ें, छाता एंड जैकेट्स, इट्स अ मस्ट। कितनी भी धूप हो, कुछ भी हो, लेकिन कुछ ना कुछ अपने लिए हमेशा कैरी करते रहना चाहिए। बढ़ते हैं आगे और जरा देख लें SBI रेट्स क्या है।
2: ये है
3: Leica Gold
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: £1 in British sterling today could get you up to 128 Indian rupees. Remember to make your transfers via branch, online or by using Yono SBI UK mobile app.
3: The Evening Show with Ashwini.

0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
1: द ग्रेट ग्रैमलर से सुनाया आप सभी को ये गीत अमिताभ बच्चन और आशा भोसले की आवाज़ में। वेनिस जो जो घूम के आएंगे, आई एम श्योर आप लोगों के रोम वेनिस की जितनी भी यादें होंगी वो ताज़ा हो गई होंगी इस गीत को सुन के। होता है ना, कुछ चीज़ें हमारे सिर में एपिसोडिक मेमोरी बन के रह जाती है, स्पेशली विथ म्यूज़िक। नहीं भाई, मेरा तो अभी तक जाना नहीं हुआ है रोम या वेनिस घूमने के लिए, मैं पहुँची नहीं हूँ, लेकिन हाँ यूरोपियन कंट्रीज़ कुछ घूमी हूँ। जैसे जैसे समर्स आते हैं हम सभी प्लान करना शुरू कर देते कि इस साल कितने जाएंगे भाई। तो समर के प्लान्स आप लोगों के यहाँ शुरू हो गए होंगे, नहीं हुए होंगे, मतलब आप कहीं घूमने नहीं जा रहे, तो आई एम श्योर हमारे यहाँ के समर्स में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, हमारे अपने फैमिली मेंबर्स आते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स आते हैं, दोस्त पड़ोसी न जाने कौन कौन, हमारे गाँव से भी कोई आ रहे हैं तो भी हमें मिलते ही मिलते हैं। दिस इज़ वॉट ह्यूमन रिलेशनशिप से ऑल अबाउट, कि कहीं पर भी किसी देश में जा रहा कोई अपना हो ना तो उनको मिलने का मज़ा कुछ और ही होता है।
0: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: 3, 2, 1, 0 percent APR on an all-electric Mini Cooper.
3: What was that, Luton?
2: Handling is extraordinary. Center of gravity so low. And it could be ours with a 15% deposit and 3-year term.
3: Okay, Luton, reroute me to the nearest Mini retailer now.
4: Land a new all-electric Mini Cooper with 0% APR. Report to your Mini retailer today. Mini UK is a credit broker. Ordered and delivered by 30th of June. PCP finance with Mini Financial Services. Subject to status. 18 plus T's and C's apply. Mini.co.uk/Cooper.
0: This is Ashwini, in for Anissa Nazir, on The Evening Show.

0: व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रैक फ्रॉम द फिल्म कारवां। आर्टिस्ट ऑफ द वीक में आशा पारेख से रिलेटेड जितने भी गीत हैं हम पूरी कोशिश करेंगे इस पूरे सप्ताह आप सबको सुनाएं। दिन में इतने सारे शोज होते हैं और सोचिए कि आशा पारेख की कितनी अमेजिंग ट्रैक्स हैं, उनका डांस, उनका परफॉर्मेंस, शी इज सच अ वर्सेटाइल एक्टर एंड साथ में जिस तरीके से मंझा हुआ अभिनय, हमेशा जो एक्टिंग वो आती थी उनकी तरफ से, एक्टिंग कम ही लगती थी ना उस जमाने में। आई डोंट नो, आई थिंक पीपल वर डूइंग गुड। हाँ, कभी कभी ओवर एक्टिंग भी कुछ जगह हो जाती थी लोगों के, नॉट आशा पारेख, लेकिन गीत संगीत जो है ये बहुत ही एनहांस्ड वे में एक्टर्स उस टाइम पे परफॉर्म करते थे। अभी फिलहाल तो ओ माय गॉड, इट्स टोटली डिफरेंट बॉल गेम नाउ। अभी के एक्टर्स भी बहुत बहुत बहुत मंझे हुए खिलाड़ी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। गज़ल या कवाली, आज है मंडे तो क्या लेके आएगी अश्विनी? मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ अर्थ फिल्म से जगजीत सिंह एंड चित्रा सिंह की आवाज़ में गजल।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
1: Ghazal.

0: गजल फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Ye hai Laika Gold.
2: Laika Gold.
0: This is Ashwini in for Anisa Nazir on the evening show.
2: Laika Gold.
3: भाई आप सभी को धन्यवाद तो ज़रूर देना चाहेंगे उल्लास जी, हाजरा जी, भरत जी, नंदा प्रवीण जी, सरोज जी, मिसेस शेख, बेपसी जी, फिर अनु जी, जैस्मिन जी, कुमुद जी, गुल, चंदन पांडे, प्रदना, सहर, अरुणा जी, अर्जुन जी, राजेश जी, संध्या जी, विनी, विनोद जी, जैस जी, मयूर जी, मीनाक्षी, हरीश जी, दिलीप जी, अमिता जी, विजय गनुआ जी, अहिर जी, साथ में हमारे कुछ कुछ नंबर्स जो हैं जिनके नाम मुझे ना अभी पता नहीं पड़ते, आप वेरी वेरी सपोर्टिव, भारती जी एंड हंसा जी, येस यू आर देयर एज वेल. आप सभी लोग जो है हमारा साथ देते रहते हैं और कुछ कुछ लोग जो हैं वो इतना हर गीत पे जब उनकी तरफ से फीडबैक आता है बड़ा अच्छा लगता है, वो अपनी ना यादें हम सबके साथ में शेयर करना शुरू कर देते हैं. कितनी अच्छी चीज़ है ना, देखिए रेडियो के माध्यम से हम लोग जब एक दूसरे से बातें करते हैं और हमारी यादें एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं तो दिस इज़ द ह्यूमन कनेक्शन वी ऑल हैव बिकॉज ऑफ दिस रेडियो. हम सभी मिलते हैं, गीत संगीत होता है, गपशप होती है और साथ में आती है एडवर्ड्स. तो जरा चले एडवर्ड्स की तरफ.
4: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रैवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com.
5: Travel Hub, best service with unbeatable price.
4: At all protected.
5: Visit travelhubworld.com.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danu. Prime location,
6: high appreciation
7: in Dubai.
0: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Like Our રેડિયો.
8: આ સપ્ટેમ્બર પેરિસ માં ઇતિહાસ લખાઈ રહ્યો છે.
9: બીએપીએસ મંદિર નું ઓપનિંગ અને સ્ટાર ટૂર્સ તમને લઈ જઈ રહ્યું છે આ પવિત્ર યાત્રા પર.
8: યુરોપ ના 3-9 દિવસ ના ટૂર્સ,
9: ફ્રાન્સ, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ઇટલી અને જર્મની સાથે
8: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ.
9: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે, આજે જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર સાથે.
8: કોલ 02089002323 ધ સ્ટાર ટૂર્સ.
9: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન.
10: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
0: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Like a Radio. Currency updates are sponsored by LemFi Mobile App. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
3: For one British pound, you'll get 128.81 Indian rupee, 377.17 Pakistani rupee, 166.05 Bangladeshi taka, 85.19 Afghani, and 432.44 Sri Lankan rupee.
11: Laika Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: LIKA Gold.
11: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
3: Gold is currently trading at £108.44 per gram.
11: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
3: टिक टिक करते हुए घड़ी कह रही है एक बार अश्विनी टाइम तो चेक कर लीजिए. इट्स 43 मिनट्स पास्ट 9. आप सभी ने ट्यूनिंग किया है आप सभी का अपना लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. मेरा टाइम हो रहा है जाने का, लेकिन उसके पहले कहेंगे धन्यवाद पन्ना जी और रमेश जी आपको भी. जैस जी आपका नाम भी मिस हो गया था, लेकिन क्या करें आप लोगों के मैसेजेस आते रहते हैं. हम लोग यहाँ पे पढ़ते भी हैं, कुछ लिखते भी हैं और साथ में अनाउंसमेंट्स भी करते रहते हैं. आप लोगों का प्यार ऐसे ही हमेशा हमारे साथ रखिए. मंडे का दिन निकल गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस. इस सप्ताह की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है. कल शाम आपकी मुलाकात होगी मेरे साथ फिर से. तो पूरे सप्ताह मंडे से लेकर फ्राइडे तक शाम 7 से 10 बजे तक होती है आपकी मेरी मुलाकात 3 अमेजिंग फीचर्स के साथ में. यादों की बारात इन फर्स्ट आवर, देन इमोशन ऑफ द डे इन सेकेंड आवर एंड गजल या कवाली. आई एम श्योर आप लोगों को ये गजल बहुत पसंद आई होगी क्योंकि आप लोगों के मैसेजेस आए. और हमेशा की तरह लाइफ बहुत सुंदर है, उसे कॉम्प्लिकेटेड ना करें. प्यार बहुत बहुत आवश्यक है इस जीवन को जीने के लिए, तो प्यार दो प्यार लो. और पावर तो किसी को बर्बाद करने के लिए चाहिए जो आप लोग नहीं यूज करते. ऑन दैट नोट आई से गुड नाइट. प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. दिस इज योर फेवरेट रेडियो स्टेशन.
12: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM.
13: Star Track of the Hour, sponsored by Star Tours. From Italy to Paris, Japan to USA, Star Tours takes you where you want to go. That's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.

0: Like a Gold।
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे।
3: साउथ हॉल ट्रेवल
2: फोन 02085748410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil,

0: Gold Nights on Like a Gold.
1: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
2: TravelHub, best service with unbeatable price.
1: At all protected.
2: Visit TravelHubWorld.com.
3: 105 सुपरहिट शोज पछी हवे लंडन मा आवी रह्यु छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी जयज एंटरटेनमेंट लईने आवी रह्या छे सखणा रेजो हस्बंड जी लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनी फुल गारंटी फ्राइडे 26 जून 27 पाटीदार समाज वेम्बली पार्क मा रातना 8 वागे टिकट्स बुकिंग माटे विजिट करो eventbrite.co.uk कॉल करो वीडियोरामा अथवा कॉल करो मिस्टर बी 0786028065 सखना रेजो हस्बंड जी
4: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
5: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
6: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com टीज एंड सीज अप्लाई
7: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk.
8: Sari Raat, Bollywood Classics ka saath. Sirf Leica Gold par.

0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
1: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एज रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई इवेंटिम अपोलो हैमर स्मिथ हमारे राम बुक योर टिकट्स नाउ विजिट www.eventimapolo.co.uk एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइक

0: अरे अरे मैं भी हो गई लाल।
1: साधु साधु।
0: फिर रात हुई, एक बात हुई, चोरी चोरी चोरी मुलाकात हुई,
1: फिर
0: फुर फुर फुर फुर। बताओ नी बड़ी क्या बात हुई, कह दो
2: कह दो
0: कह दो
2: कह दो।

0: पराई।
1: रघुकुल रीत चला चती चल, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचाना ना जाई,
2: जाई जाई
1: बन चले।

0: ये गुड़म।
1: अरे अरे भालू आया?
2: नहीं आया।
1: तो फिर सो जाओ।
3: लाइक अ गोल्ड पर हर रात की यही रीत, पुराने मगर सदाबहार गीत।

0: Laika Gold, the voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
1: Atif Aslam live in the UK.
0: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
1: Book your tickets now at AXS.
0: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
1: Exclusive radio partner, Laika Radio.
2: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
3: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
2: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
3: गारंटेड
2: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
3: फोन 02085748410।
2: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।